हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त 2026। सवेरे के 5:56 और 36 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेन्स और सेकंड लेडी उषा वेन्स को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह 2 दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के श्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है निर्मल।

निर्मल यानी पाक, साफ, स्वच्छ। बच्चे भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, तभी तो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। बच्चों का यही सच्चापन, कोरापन मन की निर्मलता कहलाती है। छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, इन सबसे रहित मन निर्मल होता है, बिल्कुल ईश्वर तुल्य। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार की आपाधापी में संघर्ष शुरू होने लगता है, हमारे अंदर कामनाएं जागने लगती हैं, हम उनकी पूर्ति हेतु शीघ्रता शीघ्र प्रयास करते हैं, चाहे उचित हो या अनुचित। यहीं से विकार हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं और ये विकार मानव समाज के भाईचारे को कई प्रकार से तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गंदगी हमें पसंद नहीं। हम घर को भी प्रातः साफ करते हैं तथा स्नान आदि कर स्वयं को भी, क्योंकि सफाई अंततो गत्वा सुंदरता में प्रकट होती है। इसी तरह जब मन की निर्मलता हमारे संस्कार में आती है, तब मानवीय रिश्तों के व्यवहार संस्कार में सौंदर्य को प्रकट करती है। अतः मन की निर्मलता हेतु हमें हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। कोई दुर्गुण मन में प्रवेश करे, इससे पूर्व ही हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हम अपने मन को एक बालक की तरह निर्मल बना सकते हैं। हमें अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए।

जो हमारी कमियों को बता, हमें सचेत करता रहे। तभी तो कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। प्रशंसा की भूख प्राय सभी में होती है, प्रशंसा कब चापलूसी में बदल जाए पता नहीं चलता। इस प्रकार की व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द होंगे तो हमारे मन की निर्मलता कब कलुषता में बदल जाए पता नहीं चलेगा। अपने आलोचकों को प्यार से संग रखना आवश्यक है। निर्मल हृदय वाले अपने आसपास के दीन दुखी जनों को सहयोगी बनाकर चलते हैं। संसार में सच्चे मन निर्मल हृदय के व्यक्ति ही संस्कार संस्कृति के पीढ़ी दर पीढ़ी भागीदार होते हैं। हमारे हृदय को निर्मल रखने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

समूह स्वर में दिशागान के साथ ही वंदना का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित श्री रामचरित्र मानस गान की 145वीं कड़ी। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

एक श्रीराम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्रीराम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे। मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
4: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की 145वीं कड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनके समय की। कार्यक्रम रूपरेखा में सबसे पहले कर सारी बात, प्रसारित होगा

बजे आप सुनेंगे चर्चा, विषय आदिवासी दिवस पर वार्ता होंगी प्रोफेसर वंदना बरमेजा। 10:20 पर आप सुनेंगे हेलो जयपुर। 11 बजे आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स। 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। 1:30 पर आप सुनेंगे बालवाणी।

सात बजे आप सुनेंगे ग्राम भारती से बातचीत होगी मध्यप्रदेश आमदनी का साधन। श्रोताओं 7:30 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी, इसमें बातचीत होगी राजस्थान में व्यवसायिक फूलों की खेती पर। वार्ताकार होंगे सौरभ शेरावत।

काश्तकार भाइयों और बहनों, राम राम सा। बकरी गरीब की गाय कही जावे है और बकरी पालन बहुत ही लाभकारी साबित हो सके है वहाँ पशुपालका ताई जहाँ कने पूंजी थोड़ी है। लेकिन यो लाभ जद ही आपा ने मिले लो, मुनाफो जद ही आपा ने मिले लो, जद आपा नवाचारा ने अपना वाला जागरूक पशुपालक बना ला और अशी बातें जो कि बकरी पालन में बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वहाँ को ध्यान रखा ला। तो आज अशी बात करा आपा कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय क्यों है और कहीं बन सके है। अगर बात करा ग्रामीण अर्थव्यवस्था री और पशुपालन री, तो बकरी पालन महत्वपूर्ण रहो है। आजकल यो केवल कमजोर वर्ग तक ही या छोटा समूह तक ही कोनी बल्कि बड़ा पैमाना पर भी इको व्यवसायीकरण हो गयो है। राजस्थान की जो मोटी मोटी बकरी की नस्ला है जो चोखी आमदनी आपा ने दे सके है, बीमे आवे है सिरोही, मारवाड़ी, जमनापारी और झकराना। ए अशी प्रमुख बकरी की नस्ला है जो कि अपना क्षेत्र ताई बहुत चोखी है। सही देखभाल, संतुलित आहार और कुशल प्रबंधन से बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय बन सके है। तो कईयान को प्रबंधन आपा ने करनो चाहिए की बात करा, पर से पहली बात करा बकरी पालन से आय का प्रमुख जो स्रोत है बीमे आवे है आपा से पहले तो दूध बेच सका है ना। दूसरी बात दुधारू बकरिया ने बेच सका हाँ, क्योंकि आंखों भी दाम चोखो मिल जावे है। बकरी को मांस भी बाजार में इकी मांग रहे तो इन्हें भी बेच सका हाँ। ऊन और खाल सो भी आपा जो है आमदनी कर सका हाँ। और बकरी की मींगणिया सो बनोड़ी जो खाद होवे है बीने भी आपा बेच सका हाँ और आमदनी कर सका हाँ। अब बात आवे है कि बकरी का जो रहवा की जगह है बाड़ो है बी की व्यवस्था कयान की होनी चाहिए। बकरी की आवास व्यवस्था में कुछ स्थान तो छायादार और ढक्योड़ा होना चाहिए और कुछ एक जगह खुली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि बी की इच्छा हुए तो बा धूप में बैठ जावे, बी की इच्छा हुए तो बा छाँव में बैठ जावे और साफ सुथरो संतुलित आहार यानी चारो और साफ सुथरो पानी बिने मिलनो चाहिए। अब जब पानी की बात आवे तो यो ध्यान रखा कि गर्मिया में पानी जो है बी को तापमान शीतल होना चाहिए।

ठंडो होनो चाहिए, और अगर सर्दियां हैं तो बहुत ज्यादा ठिरियोडो पानी वेलो तो बकरी कौन पी पावेली, अगर पी वेली तो बीमार हो जावेली। तो जो पानी को तापमान है इको भी ध्यान ई तरीका हुई राखा, जी यहाँ पर चारा को ध्यान रखा कि चारों भी जो है संतुलित होवे, बी में सारा पोषक तत्व भी ने मिल सके। दूसरी जी की बात है कि बाड़ो पूर्व पश्चिम दिशा में बनेड़ो होनो चाहिए, जिसमें कि सूरज की सीधी गर्मी और ताप से बचो जा सके। तीसरी बात कही है कि प्रति वयस्क बकरी के ताई आपने 1 से 1.5 वर्ग मीटर री जगह अपना बाड़ा में रहवे ई को ध्यान रखनो चाहिए। अगली बात कही है कि नर बकरा जो होवे, छोटा बच्चा होवे, दुधारू बकरियां होवे और बीमार जो बकरी है, आ सबके रहबा की जो व्यवस्था है बा न्यारी न्यारी होनी चाहिए। जठे ताणी साफ सफाई री बात है तो बकरी समूह में रहवे है या तो आप जाना ही, इलिए की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि अगर बीमारी फैली तो बा फैलती चली जावेली। बर्तन जो बकरी का चारा और पानी के ताई आप काम में ले रहा वह रोज साफ होना चाहिए। मींगनार और निस्तारण रोजाना करा और बाड़ा सुदूर गड्ढा में आने डालनो चाहिए। मैया भी अगर आप बकरी की खाद बेच वो चाह रहे हो मींगनिया की, तो बिन आप खाद बनाओला तो सही ना, तो सफाई भी हो जावेली बाड़ा की और मींगनिया सु खाद भी बन जावेली। चारा और पानी की खेड़िया ने भी हमेशा साफ रखनो चाहिए। अब बात करा बाह्य और अंतः परजीवियां की रोकथाम आपा कहीं करा, तो देखो ई में कही है कि बाहरी जो परजीवी है अब कौन सा हुआ है, जया चीचड़ा है, जुआ है, आने रोग बा खातिर समय सारू दवा को छिड़काव करता रहवा। अंते परजीवियां सु बचावा की खातिर नियमित अंतराल पर कृमि नाशक दवाई आपने अपने बकरिया ने पिलानी चाहिए। अब बात आवे टीकाकरण की, जया मिनक अपना टाबरा ने टीकाकरण कर बीमारियों से बचावे है, अय ही पशुपालक ने चाहे कि वो अपना ढांडा को टीकाकरण जरूर करवावे। नियमित टीकाकरण से संक्रामक रोग ने रोक्यो जा सके है, विशेष तौर से फड़किया है, माता रोग है, मुंह पका खुरपका जैसा रोग ने तो टीकाकरण से रोक्यो जा सके है। अब बात आवे है बकरी का पोषण की, तो भाई संतुलित चारों दानों और सप्लीमेंट्स आने देना चाहिए। दूसरी जी की बात है कि एक बकरी ने प्रतिदिन बी का शारीरिक वजन तो 3.5% मात्रा के बराबर शुष्क खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़े है। इमें खेजड़ी की सांगरी है, लूंग है, बेरी का पाला है और देसी बबूल की पत्तियां इन्हें पूरो की हो जा सके है। दूध देने वाली जो बकरियां हैं या प्रजनन योग्य बकरियां हैं बाने तेजी से बढ़बा के ताई, और जो तेजी से बढ़ वाला टाबर है बकरियां का बा के ताई भी अतिरिक्त संतुलित आहार देना चाहिए। जो आप दे रहा हो वह तो दे ही रहा हो, लेकिन अगर कोई भी बकरी जो दूध पिला रही है या गर्भवती है या जो नाना टाबर है आकी बढ़वार तेज हो तो आने थोड़ा सो ज्यादा संतुलित आहार आपने देना चाहिए। 40 किलोग्राम वजन आली गर्भवती बकरी ने 250 से 300 ग्राम दाणो देनो ही चाहिए। दुधारू बकरी ने 250 ग्राम दाणो निर्वाहन राशन के रूप में और प्रति लीटर दूध पर 400 ग्राम दाणो उत्पादन के ताई देनो जरूरी है। इन्हें यहाँ समझा कि अगर बकरी 1 लीटर दूध देवे है तो बीने 400 ग्राम दाणो उत्पादन के ताई और देनो चाहिए, जो आपा बिने चारों दे रहे हम भी के अलावा। अगर 2 लीटर दूध दे रही है तो 800 ग्राम हो गयो यो, यानी प्रति किलोग्राम 400 ग्राम दाणो ऊपर सुन देनो चाहिए। बकरिया ने पीबा के ताई प्रचुर मात्रा में साफ पानी देनो चाहिए, पानी तो देनो ही है पर पानी साफ देनो एको ध्यान रखा। लवण धातु नियमित रूप से दिया, विशेषकर जद पशु दूध दे रहे हुए या गर्भवती वे या बीकी बड़वार वैरी वे तो लवण युक्त धातु भी ने देनी चाहिए। बकरिया का बाड़ा में खनिज लवण ईंट जिन्हें मिनरल ब्रिक कहवे है रखनी चाहिए, जिसों की लवण धातु की जो जरूरत बांका शरीर में है वह पूरी हो जावेली। अब ई मिनरल ब्रिक ने यानी जो लवण युक्त ईंट है इन्हें रखबा का 2 फायदा है। एक तो जद भी बकरी ने जरूरत महसूस होवे लीबी का शरीर ने बोजार बटे ठाणा में भी ईंट ने चाट ले लो तो बी के जो जरूरत है शरीर की पूरी हो जावेली। दूसरो जो पशु पालक बकरी पालक भाई बहन है बिने बार बार ई की चिंता करनी कौन पड़ेली, वो चिंता मुक्त हो सके क्योंकि आप तो बटे मेल दिया अब्बा बकरी अपने आप ले सके है। तो अगर आपा संतुलित आहार रो ध्यान रखा, आहार के सागे सागे जो आवास की व्यवस्था है भी ने सुनिश्चित करा और चोखो प्रबंधन बकरिया के पालन में आप

0: करा तो आप सफल बकरी पालक बन सका हां और बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय आपने ताई बन सके है।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश। नए

0: नमस्कार श्रोताओं, सौरभ कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप एक संस्कृत वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश शर्मा।
1: समाहार साम्नाम प्रतिपदम ऋचाम धाम यजुषाम लयह प्रत्यूहानाम लहरी विततिर बोध जलधेहे कथा दर्पक्षुभ्यत कलिकथक कोला हल भवम हरत्वंतर ध्वांतम हयवदन हेशा हल हल ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। आकाशवाण्याः जयपुरकेन्द्रेण प्रतिरविवासरे प्रसारितेऽस्मिन् सौरभ नाम्नि संस्कृतकार्यक्रमे सर्वेभ्यः सुधीभ्यः श्रोतृभ्यो नमो वाचं विदधाति। वयं जानीमो यद् अस्ति जगदिदं एका प्रहेलिका। अस्य प्रहेलिकाभूतस्य जगतः स्वरूपज्ञानाय अनेकेषां सभ्यशिक्षितदेशानां चिन्तनशीलाः मनीषिणः प्रयतमानाः सन्ति। भारतवर्षस्य तत्त्वदर्शिनो विद्वांसः स्वप्रातिभनैत्रैः यानि सूक्ष्मतत्त्वानि दृष्टवन्ताः, स्वीयया तीक्ष्णबुद्ध्या च यानि तत्त्वानि विश्लेषणपथम् आनीतवन्ताः, तानि दर्शन शास्त्रम नितांतम महनीयानि सन्ति। तात्पर्य है कि भारत की प्राचीन सभ्यता यथा कला, स्थापत्य, साहित्य, धर्म, नीति तथा विज्ञान, जितना कि वह तब तक विकसित हो पाया था, इन सब का एक समन्वित मूर्त रूप थी। किंतु भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैचारिक उपलब्धि रही है दर्शन शास्त्र। यही समस्त मूर्धन्य व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक गतिविधियों का चरम लक्ष्य माना जाता था तथा इस विशाल भूभाग की सामाजिक संस्कृति में जो विविधता है उसमें एकता तथा तादात्म्य स्थापित करने वाला यह दर्शन शास्त्र ही एक केंद्र बिंदु था। यदि भारत की एकता को ढूंढना है तो वह आपको न तो विदेशी आक्रमणों के इतिहास में प्रतिबिंबित मिलेगी, न समय समय पर हुए विभिन्न राज्यों के उद्भव में, न किसी भी महान सम्राट के साम्राज्य विस्तार में। वास्तव में यह एकता हमारी प्राचीन संस्कृति की एक आत्मिक आकांक्षा का फल थी, उन आध्यात्मिक सिद्धांतों के महत्वबोध का फल थी जो अन्य सभी मूल्यों की बजाय कहीं अधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे। और यह भावना विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों के युगों की लंबी यात्रा के बाद आज भी ज्यों की त्यों जीवंत है, और वह यात्रा है भारतीय दर्शन की सुदीर्घकालीन यात्रा, जो आज भी भारतीय जनमानस को आप्यायित, सम्मोहित एवं आकर्षित कर रही है। वयम् जानीमः यत् तत्वज्ञानम् हि विद्यते भारतीय संस्कृति धर्मयोर्मूलम्। तत्वज्ञानस्य गंभीर अध्ययनमस्ति दर्शनशास्त्रस्य मूलम् उद्देश्यम्। दृश्यते तत्त्वम् येन इति व्युत्पत्त्या येन वस्तुना सत्यभूतम् तात्विकम् स्वरूपम् दृश्यते तद् दर्शनम् उच्यते। कोऽहम्, कुत आगच्छम्, अस्य परिदृश्यमानस्य विश्वस्य किमस्ति सत्यस्वरूपम्, कस्मात् इदं जगत् उत्पन्नम्, अस्याः सृष्टेः कारणं किम्, सृष्टिः इयं चेतना अचेतना वा, विश्वेस्मिन् किमस्ति अस्माकं जनानां कर्तव्यं, सम्यक् जीवनस्य कः शोभन साधनमार्गः, किमस्ति मानवजीवनस्य परमं प्रयोजनं, मोक्षोपायाः के, इत्यादीनां प्रश्नानां समुचितम् उत्तरदानमेव विद्यते भारतीय दर्शनस्य प्रमुखं लक्ष्यम्। वस्तुतः दर्शनम् अस्माकं योऽयं विषयः अस्ति तत् विषयः शास्त्रशब्देनाभिधीयते। शास्त्रशब्दः शास शंस धातुभ्यां निष्पद्यते इति विद्वांसः वदन्ति। यस्य क्रमशः अर्थः अस्ति शासनं, शंसनं वा। शासने शास्त्रस्य धर्मशास्त्रमित्यर्थो भवति, शंसने च शास्त्रस्य अर्थो वस्तुनः सत्यस्वरूपवर्णनं वर्तते। शासनशास्त्रं क्रियापरं, शंसनशास्त्रं च ज्ञानपरं भवतः। भवति शंसनार्थे शास्त्रशब्दप्रयोगः दर्शनशब्देन साकं। वर्तते धर्मशास्त्रं प्रधानतया विधिनिषेधयोर्विधानेन पुरुषतन्त्रं, किन्तु दर्शनशास्त्रं वस्तुस्वरूपप्रतिपादकत्वेन वस्तुतन्त्रं विद्यते। इसका आशय है कि भारत की प्राचीन सभ्यता, कला, स्थापत्य, साहित्य, धर्म नीति तथा विज्ञान, इन सबको मिला करके भारतीय दर्शन में संपृक्त है और भारतीय दर्शन के माध्यम से ही कलाओं में, स्थापत्य में, साहित्य में, धर्म में, नीति में, विज्ञान में, यहाँ तक कि भारतीय जनमन जीवन में वह इस प्रकार से रच बस गया है कि भारतीय दर्शन वस्तुतः है एक ग्रामीण व्यक्ति से लेकर के अत्यंत उच्च स्तरीय सभाओं को सुशोभित करने वाले लोग सभी भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराओं से किसी न किसी रूप में ओतप्रोत हैं। पाश्चात्य विचार शास्त्र से सामान्यम नाम वर्तते आंग्ल भाषायाम फिलोसफी। भारतीय दर्शन अर्थात दर्शन शास्त्र को फिलोसफी कहने की एक परंपरा है। शब्दोयम फिलास सोफिया इति द्वयोः ग्रीक भाषा शब्दयोः मिश्रणेन निष्पद्यते। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से फिलॉसफी यह शब्द बना है। शब्द द्वयेन निष्पन्नस्य फिलॉसफी शब्दस्य अर्थो भवति विद्यायाः अनुराग विद्यायाम अनुरागो वा। जीव जगदीश्वर तत्वान्वेषण परायणो विद्वानेव फिलोसोफर विद्यानुरागी इति उच्यते। तस्य संज्ञा भवति फिलोसोफर विद्यानुरागी। विविध विज्ञानैः उद्भावित सत्यानाम् एकीकरणमेवास्ति फिलोसफी इत्यस्य प्रतिपाद्यो विषयः। अतः सामान्य रूपेण दर्शन शास्त्रस्य कृते भारतेपि फिलोसफी शब्दाः प्रयुज्यते। परन्तु इदं ज्ञातव्यं यत् फिलोसफी दर्शन शब्दयोः प्रयोजनेस्ति पार्थक्यम्। फिलोसफी कल्पना कुशल कोविदाम विदुषां पंडितानां च मनोविनोदस्य साधनं विद्यते।

0: वृत्त्यां मनोर्वचनमेव प्रमाणरूपेण विद्वद्भिः अत्र समाद्रियन्ते। प्रमाणरूपेण विद्वद्भिः तद् मनोर्वचनमेव समाद्रियते। तद् वाक्यमस्ति नास्तिको वेदनिन्दकः। तात्पर्यः अस्ति अस्य वाक्यस्य, महाराजस्य मनोर्निर्देशनेन सिद्धमस्ति यद् ये वेदनिन्दकाः सन्ति ते एव नास्तिकाः। येषां न ये वेदाः प्रमाणरूपेण न स्वीक्रियन्ते तेषां चिन्तनं नास्तिकरूपेण परिगण्यते। अस्मिन् समूहे चार्वाक जैन बौद्धादि दर्शनानां नामानि आयान्ति। एतानि दर्शनानि वेदान् तत्सम्बन्धानि शास्त्राणि न उररी कुर्वन्ते। परं यत् भारतीयं यत् दर्शनमस्ति, यत्र आस्तिकं दर्शनमस्ति, तेषु आस्तिकदर्शनेषु एकमेव दर्शनं साङ्ख्यमेव दर्शनम् इति धिया इति शास्त्राणां निर्णयत्वात् साङ्ख्यदर्शनस्य प्राचीनत्वं सर्वैः विद्वद्भिः उपकल्पितम् अस्ति। तत्र योगदर्शनमस्ति, साङ्ख्यदर्शनमस्ति भगवतः कपिलस्य, योगदर्शनमस्ति भगवतः पतञ्जलेः, वैशेषिकदर्शनमस्ति महर्षेः कणादस्य, न्यायदर्शनमस्ति महर्षेः गौतमस्य, मीमांसादर्शनमस्ति यत्र धर्मविचारः क्रियते महर्षेः जैमिनेः, एवमेव सर्वदर्शनमूर्धन्यं वेदान्तदर्शनमस्ति भगवतः बादरायणस्य। तत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति तत्र आदिमे एव सूत्रे भगवता बादरायणेन तत्र ब्रह्मजिज्ञासा प्रतिपादिता। तत्र ब्रह्मणः किं लक्षणमस्ति, भगवता वेदव्यासेन यद् लिखितमस्ति ब्रह्मणः लक्षणं, तदेव श्रीमद्भागवतस्य मङ्गलाचरणश्लोकेन सह तत्र आयाति, जन्माद्यस्य यतः। तैत्तरीयोपनिषदि तत्र कारणं ब्रह्मणः जगत्कारणत्वेन ब्रह्म एव प्रतिपादितमस्ति, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः इति श्रीमद्भागवतेऽपि आयाति। एवमेव जन्माद्यस्य यतः तत्र कथं ज्ञानं भवति, शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् इति चतुर्ष्वेव सूत्रेषु ब्रह्मजिज्ञासायाः ब्रह्मणः निरूपणं भवति। चतुर्षु सूत्रेषु शङ्कराचार्यादीनाम् आचार्याणां, भगवद् रामानुजाचार्याणां, श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याणां, श्रीमध्वाचार्याणां, श्रीवल्लभाचार्याणाम्, एवमेव मध्यकालीनभक्ति आन्दोलनस्य प्रवर्तकाचार्याणाम्, आनन्दभाष्यकाराणां, श्रीमद् रामानन्दाचार्याणाम् आनन्दभाष्यम् अस्ति। तर्हि अस्माभिः वस्तुतः चतुसूत्रिपर्यन्तं ब्रह्मसूत्रं तु पठितव्यमेव। अत्र यह असंभव नहीं है कि मीमांसात्मक चिंतन और सिद्धांतों से भी इनका संपर्क रहा हो, लेकिन ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसमें इनका प्रामाणिक ढंग से एकत्र विश्लेषण किया गया हो। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 15-16 भारतीय दर्शनों को एकत्र समाहित करके भारतीय दर्शन के लिए एक उपकारक पुस्तक पिछले 800 वर्षों से हमें प्राप्त है। इस संबंध में सबसे एक ग्रंथ महत्वपूर्ण है जिसमें समग्र आस्तिक भारतीय दर्शनों का संग्रह है, और वह पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। गीता के विषय में प्रसिद्ध है, गीता सुगीता करतव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। अतएव अयम नियमः अस्ति यत् वेदांत परंपरायां यः कोऽपि आचार्यः अस्ति स त्रिषु ग्रंथेषु उपरि यदा भाष्यं करोति तदा एव स जगद्गुरु पदवीं अर्हति प्राप्नोति च। एवमेव शंकराचार्येण प्रस्थानत्रय्यां भाष्याणि कृतानि, रामानुजाचार्येण, निम्बार्काचार्येण, वल्लभाचार्येण, मध्वाचार्येण, एवमेव जगद्गुरु रामानंदाचार्येण। यह कहा जा सकता है कि श्री मद्भगवद गीता हिंदू चिंतन की सर्वोत्तम कृति है। यह श्लोकबद्ध है और धार्मिक, नैतिक तथा आत्मिक समस्याओं के ऊपर व्यापक एवं स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श करती है।
1: तौरप कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एक संस्कृत वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर महेश शर्मा। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: अम्मा जी, जरा मुन्ने को संभाल लेना, मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ।
1: देखती हूँ। अरे रे रे, इसने तो पोटी कर दी। अरे बेटा, तूने तो सारे हाथ पांव सब सान लिए। अरे मुन्ने के दादाजी।
2: अरे क्या है?
1: जरा एक लोटा पानी का तो लेकर आओ।
2: वो बहू कहाँ गई?

0: है, आता हूँ।
1: ये लो, लो दो।
2: हाँ, जरा ठीक से डालो।
1: हाँ, लो, लो, लो।
2: इधर इधर इधर।
1: हाँ, ये ले, ये, बस हो
2: गया। लो, तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
1: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
2: क्यों, क्या हुआ? मुन्ने की ही तो पॉटी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
1: अरे बावली, वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का, दोनों में ही होते हैं, इसलिए पोटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
2: ये मेरे राम जी, मैं तो समझती थी कि दूध पीते बच्चे के मल में तो गंदगी के कीटाणु हो ही नहीं सकते। अच्छा हुआ जी जो आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी कि हमेशा बच्चे की पॉटी धोने के बाद साबुन से हाथ धोकर ही काम करे।

श्रोता अगला गाना आपके रेडियो सेट्स पे आ रहा है, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, अगला गाना सुनते हैं फिल्म हंगामा से। आवाज़ें हैं अभिजीत अलका याग्निक और सोनू निगम की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

आइए अगला गाना सुनते हैं फिल्म यस बॉस से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, अगला गाना आपके रेडियो सेट्स पे आ रहा है फिल्म चलते चलते से। आवाज़ है सोनू निगम और साथियों की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने।

आइए अगला गाना सुनते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आवाज़ें हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डिमालो की। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: आइए अगला गाना सुनते हैं, फिल्म प्यार किया तो डरना क्या है से। आवाज़ है उदित नारायण की, गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, अगला गाना आपके रेडियो सेट्स पे आ रहा है फिल्म क्योंकि से। आवाज़ है कुणाल गांजावाला की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला और अंतिम गीत आपके रेडियो सेट्स पे आ रहा है लकी फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है अदनान सामी ने।

चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा।

0: और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ और फिर उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
7: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडु के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगें विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए,

0: ये कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि आइंदा 20 से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को शाये करते हुए सुर्खी बनाया है, गैर रुकाजी ईंधन साफ सुथरी तवानाई की ताकत और अजाइम की अलामत है। रोजनामा इनकलाब ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को मजबूत बनाने के लिए 187 उम्मीदवारों को तकर्रुनामे सौंपी।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरूरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनीक रॉय और सयातिन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। कलाकार होंगी सुशीला शर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का यह जयपुर अजमेर केंद्र है। सुबह के 9 बजने का है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को संबोधित किया। कहा, राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना परचम फहराया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की झड़ी। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: तिरंगा हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानी है, हमारे वीर जवानों की शहादत की निशानी है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है।

0: साल 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। इधर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में आज राज्य स्तरीय तिरंगा रैली निकाली जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन होगा। ये रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर रामनिवास बाग निकास गेट से सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पुलिस, आर्मी के जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित करीब 10,000 नागरिक भाग लेंगे। समाचार कक्ष से डॉक्टर ज्योति पारीक।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि अरुंधति चौधरी, यशवीर सिंह, राहुल शर्मा, मोना अग्रवाल और संध्या विश्नोई राजस्थान के गौरव हैं। इनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री कल जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में कॉमनवेल्थ 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर में बन रहे महाराणा प्रताप खेलकूद

0: विश्वविद्यालय से प्रदेश में खेलों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
1: खेल के क्षेत्र में जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय खेल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान का केंद्र बनेगा। अब तक 3,540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिले, इस नीति के तहत हमारी सरकार द्वारा 186 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।
0: आज विश्व आदिवासी दिवस है। ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम आदिवासी पारंपरिक दायियों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा रखी गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने और उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आदिवासी दिवस को लेकर वहां लोगों में उत्साह का माहौल है।
2: ढोल, कुंडी, शहनाई, विभिन्न वाद्य यंत्रों की गुंज से वागड़ अंचल चारों ओर से गुंजयमान हो चुका है। जल, जमीन, जंगल और पर्यावरण का संरक्षण देने, सिर पर पगड़ी, हाथों में तीर कमान, कमर में लटकी तलवार, पीठ पर ढाल, पैरों में घुंघरू, ढोल की थाप पर थिरकते आदिवासी बरसों पुरानी संस्कृति परंपराओं का निर्वहन करते हुए कहीं गैर नृत्य तो कहीं राणा पुंजा, भील, वीर कालीबाई, गोविंद गुरु की प्रतिमाओं पर मल्यार्पण के साथ नमन कर विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। आज भी कई जिलों में बरसात की झड़ी लगी हुई है। राजधानी जयपुर में कल रात से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। चूरू के सादुलपुर, रतनगढ़ और सरदार शहर में भी अच्छी बारिश हो रही है। यहां निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से तीन दिन तक दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ हिस्सों में मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
3: देखिए, पिछले दो दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
0: जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। इस साल यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 4,80,000 से ज्यादा हो गई है। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होना है। बाड़मेर में कल एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर कुर्जा फाटे के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क पर गिर गए। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने चारों युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों व्यक्ति बालोतरा जिले के धोरीमन्ना इलाके के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800 11 7 8

0: 00 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए जजों की नियुक्ति की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। नवनियुक्त जज जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से 4 उच्च न्यायालयों में जजों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को संबोधित किया। कहा, राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना परचम फहराया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की झड़ी। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर और दूरदर्शन के DTH चैनल पर भी।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
6: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
7: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
8: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
9: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।
10: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे TV एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा TV चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

0: अम्मा जी, जरा मुन्ने को संभाल लेना, मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ।
1: देखती हूँ। अरे रे रे,

0: कर दी। अरे बेटा तूने तो सारे हाथ पांव सब सान लिए। अरे मुन्ने के दादाजी।
1: अरे क्या है?
0: जरा एक लोटा पानी का तो लेकर आओ।
1: वो बहू कहाँ गई?
0: वो तुम्हारे लिए चाय बना रही है।
1: ठीक है आता हूँ।
2: ये लो लो दो।
0: हाँ जरा ठीक से डालो।
2: लो लो लो।
0: इधर इधर इधर।
2: ये ले।
0: लो तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
1: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
0: क्यों क्या हुआ? मुन्ने की ही तो पॉटी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
1: अरे बावली वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का दोनों में ही होते हैं, इसलिए पॉटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
0: ये मेरे राम जी, मैं तो समझती थी कि दूध पीते बच्चे के मल में तो गंदगी के कीटाणु हो ही नहीं सकते। अच्छा हुआ जी जो आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी कि हमेशा बच्चे की पॉटी धोने के बाद साबुन से हाथ धोकर ही काम करे।

0: भाई साहब, ओ भाई साहब, ए भाई साहब,
1: भाई क्या है?
0: भाई साहब, मैं 1 घंटे से इस प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा हूं, पर
1: अच्छी बात है अजी, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है अजी। तो मैं करके आ रहा हूं
0: नहीं, वैसे तो आप मेरी बात ही सुन रहे हैं, पर
1: अजी। पर क्या, जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि बात सुनिए? मतलब आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैंगे। प्लीज भाई, क्या मतलब अजी? मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ा ही आया था यहाँ।
0: गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए।
1: है ये स्टाइल ठीक है? आइंदा कभी ऐसे मत बुलाना। वैसे बाय दी वे, आपने मुझे बुलाया क्यों था?
0: देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि यहां पर इंक्वायरी ऑफिस कहाँ है।
1: क्यों?
0: क्यों, क्या मतलब?
1: अरे भाई, तुम क्यों पूछना चाहते हो इंक्वायरी ऑफिस का पता?
0: मुझे काम है।
1: क्या काम है?
0: अजी है कोई काम?
1: अरे भाई, फिर भी भाई आप मुझसे पता पूछ रहे हैं कि नहीं?
0: भाई कहाँ ना, मुझे काम है।
1: अरे यही तो मैं पूछ रहा हूं कि वो काम क्या है।
0: अजी मुझे कोई भी काम हो, आपको क्या मतलब? आपको पता बताना है तो बता दो, नहीं तो मुझे माफ करो।
1: अरे, आप तो खामा खामी नाराज हो गए। अरे भाई, मुझे पता बताने में क्या इतराज हो सकता है? अभी बता देता हूँ।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद,
0: अजी, आपके पता बताने का धन्यवाद।
1: अभी मैंने बताया कहाँ है।
0: नहीं, मतलब आप पता बताने को राजी हो गए ना, इसलिए।
1: अजी अभी राजी तो हुआ हूं, पता थोड़ा ही बताया है। और अभी नहीं बताऊं तो है? अजी आपका धन्यवाद तो बेकार चला जाएगा ना,
0: हाँ
1: इसलिए धन्यवाद पता बताने के बाद देना।
0: अच्छा,
1: हाँ, अब देखो यहां से सीधे जाओ,
0: सीधे।
1: फिर दाहिने मुड़ जाओ, फिर 10-12 कदम चलने पर एक दरवाजा आएगा,
0: अच्छा
1: उसमें दाएं मुड़ जाओ,
0: हाँ,
1: फिर 10 कदम आगे चलो और फिर 10 कदम पीछे चलो।
0: है 10 कदम आगे चलूं, फिर 10 कदम पीछे चलूं, तो फिर मैं चलूं ही क्यों?
1: अजी तो मत चलो, खड़े रहो यहाँ।
0: अजी अजी, तो आप कहाँ चल रही है?
1: अरे जब आप कह रहे हैं कि मैं चलूं ही क्यों, तो मैं पता बताऊं ही क्यों?
0: अजी देखिए भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब 10 कदम आगे चलना हो, फिर 10 कदम पीछे चलना हो, तो चला ही क्यों जाए?
1: अजी तो आपको पता मालूम करना है कि नहीं?
0: अजी करना है।
1: अजी तो फिर तो चलना तो पड़ेगा ही।
0: अच्छा ठीक है, बताइए।
1: हाँ, तो बस उसके बाद सामने एक वजन तुलने की मशीन आएगी
0: अच्छा
1: और उसके बराबर में ही एक किताबों की दुकान है।
0: अजी, किताबों की दुकान से क्या मतलब?
1: अजी क्या मतलब? क्या किताबों की दुकान का मतलब जहां पे किताब मिलती है।
0: अजी पर मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए।
1: अजय भाई, तो बता रहा हूं बरखुरदार, उस किताबों की दुकान के ठीक सामने इंक्वायरी ऑफिस है।
0: अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं।
1: सुनिए,
0: क्या है?
1: ऐसे ही चल दिए। एक शरीफ आदमी ने अपना कीमती वक्त लगाकर आपको पता बताया और तुम उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते।
0: मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने बहुत एहसान किया है मुझ पर, अब ठीक है।
1: हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज। हे भगवान, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ये आ गया दरवाजा, और वो रही वजन तुलने की मशीन।

0: ये किताबों के, वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। हे भगवान, आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, लाज रखना। गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी सर, मैं
1: हाँ हाँ
0: सर मैं आया हूँ।
1: आप आए हैं ये तो मैं भी देख रहा हूँ।
0: हाँ सर, हाँ मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है, ये रही मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सर।
1: ज्वाइनिंग रिपोर्ट?
0: जी सर।
1: ये कोई वक्त आने का? एक घंटा लेट
0: सर, वो बात
1: सर है। वो क्या, आज ड्यूटी के पहले दिन ही लेट?
0: हाँ सर, वो रास्ते में।
1: रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो और तुम मानो कि तुम लेट हो।
0: हाँ सर, वो तो मैं मानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन
1: जब मानते हो लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्या है?
0: सर बात ये थी कि।
1: खैर छोड़ो, यहाँ इस कुर्सी पर बैठो।
0: जी
1: देखो, ये पूछताछ ऑफिस है।
0: हाँ
1: समझे?
0: जी।
1: किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई जानकारी मिलनी चाहिए, समझ गए?
0: समझ गया सर।
1: और हर यात्री से बड़े प्यार से और धीरे धीरे बोलना, समझ गए?
0: जी सर।
1: तो अब शुरू करो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, कोई बात हो तो मेरे कमरे में आ जाना।
0: ठीक है सर। हाँ आ जाऊंगा सर।
1: मैंने कोई लतीफा सुनाया है?
0: नहीं तो।
1: तो हंस क्यों रहे हो?
0: वो तो यूं ही हंस रहा था सर।
1: ठीक है, बैठ जाओ, अब ध्यान से काम करो।
0: हे भगवान, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था।
2: ए भगोड़े ग्राम खाले खाले गरमा ग्राम, भगोड़े वाले खाले गरमा ग्राम, खस्ता भगोड़े बढ़िया भगोड़े वाले खाले।
0: ए पकौड़ी वाले
2: आए बाबूजी।
0: हाँ
2: क्या है बाबूजी?
0: भैया कैसे देते हो पकौड़ी?
2: कागज में बांध के ऐसे देते हैं बाबूजी।
0: मेरा मतलब ये है कि क्या भाव देते हो?
2: 250 रुपए की 10 किलो।
0: 250? अबे 100 ग्राम कितने की देता है?
2: अब खुद ही हिसाब लगा लो बाबूजी, गणित नहीं आती है क्या?
0: अबे तो मैं कोई गणित का हिसाब लगाने बैठा हूँ यहाँ? खैर छोड़, ला 100 ग्राम पकौड़ी दे।
2: नहीं दे सकता।
0: नहीं क्यों नहीं दे सकता?
2: खत्म हो गई है।
0: अरे खत्म हो गई तो फिर चिल्ला क्यों रहा था भाई, पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम।
2: अब बाबूजी दिन भर ऐसे चिल्लाते रहते हैं, वो तो आदत पड़ गई है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था।
0: ऐसे ही कह रहा था।
2: हाँ ए पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम खाले खाले।
0: कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, अब कोई झगन चक्कर मिल गया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। ये कोई आ रहा है
3: क्या? यही इंक्वायरी ऑफिसर?
0: हाँ भैया यही है।
3: क्या आप बता सकते हैं कि मोहन देसाई कहाँ रहते हैं?
0: मोहन देसाई?
3: हाँ हाँ मोहन देसाई, बहुत सी फिल्में बनाई हैं उन्होंने और अब बना रहे हैं देव मेरा नाम, मुझे उनसे मिलना है।
0: अरे मुझे क्या पता भैया कहाँ रहते हैं?
4: नहीं मालूम भैया। तो ये बताओ कि सुभाष रई कहाँ रहता है?
0: सुभाष रई?
4: हाँ सुभाष रई, लेजी मैन, यू डोंट नो, शोमैन शोमैन।
0: जी मुझे क्या पता कहाँ रहता है वो।
5: खैर छोड़ो, ये बताओ कि नील कमल कहाँ मिलेगी? नील कमल हमें दीवारों में चुनकर चली गई, देखो बताओ कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी।
0: अजी मुझे क्या पता कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी।
4: अरे नहीं मालूम तो फिर मैं कैसे गाना गाऊंगा कि आएगा आने वाला, 1945 में गाया था, तूने भी सुना होगा, बोल।
0: अरे पर आप ये सवाल सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई?
4: अरे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, अब तुझसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा, बोल।
0: अजी भाई साहब इस पूछताछ का मतलब है रेलवे पूछताछ, यहाँ रेलों के बारे में पूछते हैं।
4: अच्छा रेलों के बारे में?
0: हाँ।
4: इंक्वायरी ऑफिस की रेल चली जयपुर जोधपुर रायपुर धौलपुर खंडाला मंडाला और भोपाल चले।
0: देखिए भाई साहब, अगर आपको रेलों के बारे में पूछना है तो पूछिए, वरना जाइए ऐसे।
4: ठीक है अब हम रेलों के बारे में पूछते हैं भैया। ये जो होते हैं ना लाल लाल डब्बे जो इंजन के पीछे चलते हैं, कहाँ बनते हैं?
0: जी मेरे घर पे बनते हैं। अजी डिब्बे का बनते हैं और इंजन का बनता है, इस बात से मुझे क्या मतलब?
4: झूंझल क्यों खाते हैं आप? अब तो मैं रेलों के बारे में ही पूछ रहा हूँ ना।
0: अजी रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
4: रेलों के आने जाने के बारे में? अच्छे भाई साहब, ये रेल क्यों आती है?
0: भाई यात्रियों को लेने आती है।
4: फिर जाती क्यों है?
0: अरे उन्हें लेकर जाती है, इसलिए जाती है। मगर तुझे कहाँ जाना है?
4: मुझे तो कहीं नहीं जाना रे, वो थोड़ा फिल्म सिटी जाना था इसलिए आ गया रे। जाऊँ क्या?
0: अरे भैया
4: जाऊँ क्या रे?
0: अरे चलो जाओ ऐसे। भगवान कैसे कैसे लोग
6: भाई साहब जी, पता नहीं। अजी भाई साहब जी, भाई साहब जी
0: क्या है भाई साहब, क्यों आप रहे हैं आप?
6: अजी भाई साहब जी 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से बक्कर आ रहा हूँ मैं।
0: क्यों भैया क्या बात आ गई?
6: मैं जाना चाह रहा था भाई साहब कि ये भोपाल जाने वाली ट्रेन कितने बजे जाती है?
0: भोपाल जाने वाली ट्रेन?
6: हाँ जी भाई साहब जी।
0: हाँ एक मिनट जरा देख के बताता हूँ, ये वो भोपाल, हाँ भैया वो तो 8 बजे जाती है और वो तो गई
6: गई।
0: हाँ जी गई।
6: अजी भाई साहब जी भोपाल जाने वाली ट्रेन?
0: हाँ भैया भोपाल जाने वाली ट्रेन।
6: अजी भाई साहब जी, वो वाली जो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है।
0: अरे हाँ भैया, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है वो ट्रेन।
6: अजी भाई साहब समझे नहीं आप, वो 7 डाउन है, वो पूछ रहा हूँ मैं।
0: मुझे मालूम है 7 डाउन है और 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, 8 बजे जाती है, भोपाल जाती है। कहाँ ना वो ट्रेन गई?
6: गई क्या?
0: हाँ गई।
6: अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है फिर।
0: क्या आदमी, कैसा आदमी, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में।
6: अजी भाई साहब जी,
0: अब क्या है भाई?
6: कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना?
0: अजी तुम मेरे कोई जीजाजी लगते हो, कोई भाई हो मेरे, कोई दोस्त हो, क्यों मजाक करूंगा तुमसे मैं?
6: खाओ मेरी कसम।
0: तेरी कसम? तेरे पूरे खानदान की कसम? भोपाल जाने वाली ट्रेन गई?
6: वास्तव में गई क्या भाई साहब?
0: अरे वास्तव में ही गई।
6: सच्ची?
0: अरे सच्ची में गई, रियल में गई, भोपाल जाने वाली ट्रेन गई।
6: अच्छा
0: हाँ
6: ठीक है भाई साहब।
0: मेरे दादा आज मैं पागल हो जाऊंगा
6: भाई साहब जी।
0: अरे क्या है? अरे यार भोपाल जाने वाली ट्रेन गई?
6: नहीं वो तो मेरे को पता है गई,
0: तो
6: मैं तो पूछ रहा था कि पूरी गई क्या?
0: नहीं आधी खड़ी है अभी।
6: खड़ी है ना?
0: हाँ।
6: खुली?
0: और ये ट्रेन कैसे जाएगी? ट्रेन तो पूरी जाती है।
6: पूरी जाती है क्या?
0: हाँ।
6: फिर तो इंजन भी क्या होगा?
0: अरे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे? इंजन ही तो दे जाता है ट्रेन को।
6: वो भाई साहब वो गार्ड का डिब्बा भी गया क्या?
0: अरे गार्ड का डिब्बा, डाक का डिब्बा, घी का डिब्बा, सारे डिब्बे गए, तू जा यहाँ से।
6: पहिए भी गए क्या भाई साहब?
0: अरे कौन से जन्म का बदला ले रहा है, पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे?
6: अरे भाई साहब मेरा भोपाल जाना बहुत जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा।
0: अरे जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई?
6: क्यों छत भी जाती है क्या ट्रेन के साथ?
0: नहीं पीछे पीछे चलती है वो तो।
6: हाँ
0: ट्रेन में तो लगी होती है छत।
6: अच्छा
0: हाँ
6: ठीक है भाई साहब फिर।
0: कैसा आदमी है
6: भाई साहब जी?
0: क्या
6: वो भाई साहब जी, कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या?
0: क्यों नहीं हो सकता, आओ पीठ पर बैठो मेरी, चलते हैं अपन भोपाल।
6: अजी ऐसे तो देर हो जाएगी।
0: अब तुम्हारा घर है, कोई इंतजाम नहीं हो सकता समझे?
6: चलो भाई साहब मैं क्या करूं, ट्रेन कैसे चली गई, मैंने टिकट भी लिया था।
0: अरे तुम लेट हो गए भैया, ट्रेन का टाइम हो गया था इसलिए वो चली गई।
6: अरे तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई, मैंने टिकट भी लिया था ना।
0: तो टिकट लिया था तो तू कोई भगवान हो गया क्या?
6: मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को भोपाल जाना, आप मेरे को भोपाल भेजो।
0: मैं तेरे को भोपाल कैसे भेजूं?
6: कैसे भी भेजो, और ट्रेन को वापस बुला लो, मैं लटक्कर ही चला जाऊंगा।
0: अरे ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे?
6: अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो रेलवे वालों की धांधली है, रेलवे। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, रेलवे।
0: अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई?
6: मेरे को भोपाल भेजो, नहीं तो मैं ऐसे नारे लाऊंगा।
0: देखो भैया मैं भोपाल कैसे भेज सकता हूँ?
6: अरे कैसे भेजो ये आप सोचो, आपकी गलती है। अजी ये कोई लगा रखी भाई साहब? देखो
0: भैया एक काम करो, ऐसा करो तुम बस से चले जाओ।
6: बस से?
0: हाँ
6: बस से क्यों, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
0: अरे पर ट्रेन तो चली गई।
6: अरे तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो
0: गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई।
6: आपको 1-8 डब्बे बाद में भेजने चाहिए ताकि लेट आने वालों को असुविधा ना हो।
0: हाँ मैं आपकी सलाह रेल मंत्री तक पहुँचा दूंगा श्रीमान,
6: पर मैं अभी भोपाल कैसे जाऊँ?
0: अभी अभी कैसे जाओ? हाँ भैया आप बस से चले जाओ। भैया
6: बस से क्यों, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
0: अजी आपके हाथ जोड़ता हूँ, बस से चले जाओ, पैर पड़ता हूँ, आरती उतारूँ आपकी।
6: अच्छा ठीक है भाई साहब, जब आप इतना ही कह रहे हो तो फिर मैं बस से चल जाता हूँ।
0: धन्यवाद भाई साहब। हे भगवान मुझे लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है।
6: भाई साहब जी, अजी भाई साहब जी,
0: अब क्या है?
6: वो आप एक काम कर सकते हैं क्या?
0: बोलिए।
6: वो बस स्टैंड बहुत दूर है यहाँ से,
0: छोड़ के आऊंगे
6: आप? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा करिए एक टिकट मेरा बुक करा दीजिए फोन करके, मेहरबानी होगी।
0: टिकट बुक कराना पड़ेगा?
6: हाँ भाई साहब जी।
0: ठीक है एक मिनट, नंबर बताना जरा।
6: वो नंबर तो भाई साहब वो,
0: हाँ ठीक है ठीक है, ये 31-32-22।
6: हाँ भाई साहब यही था।
0: हाँ 3-1-3-2-2-2। हेलो हाँ जी, बस स्टैंड इंक्वायरी से बोल रहे हैं? हाँ साहब वो भोपाल जाने वाली बस की एक टिक हाँ जी। नहीं भाई साहब मैं कर नहीं रहा हूँ, वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई है। हाँ जी भाई साहब मैं इतना पूछना चाहता था कि ये भोपाल जाने वाली बस की कोई टिकट मिल सकती है? हैं साहब? नहीं क्यों, भोपाल जाने वाली बस गई? हट ठीक है। अब भाई साहब वो भोपाल जाने वाली बस तो गई।
6: गई क्या?
0: हाँ
6: पूछो वास्तव में गई क्या?
0: हेलो वास्तव में गई क्या? हाँ भैया वास्तव में गई।
6: ये भी पूछो पूरी गई क्या?
0: हेलो पूरी गई? अबे तेरी तो हट।
2: ए पकोड़े गरम, खाले खाले गरमा गरम पकोड़े, अरे पकोड़े गरमा गरम पकोड़े भाऊजी।
0: अरे नहीं चाहिए पकोड़ी।
7: मैं पकोड़े देने थोड़ी आया हूँ।
0: तो क्या करने आया?
7: मैं तो मैसेज देने आया हूँ।
0: किसका मैसेज?
7: वो जो सामने बेंच पर बैठा है ना चश्मे वाला,
0: वो।
7: हाँ
0: क्या कह रहा है वो?
7: उसने पूछवाया कि भोपाल वाली ट्रेन गई क्या?
0: ये इधर आ, ये रही भोपाल वाली ट्रेन।
7: मगर मेरे को क्यों मार रही?
0: अरे
7: मेरे को मार रही, ये रही भोपाल वाली ट्रेन।
0: मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। मैं अभी सर से कह के आता हूँ। सर से कह देता हूँ मैं नौकरी नहीं करूंगा, परेशान हो गया मैं। आई कम इन सर।
1: यस यस कम इन।
0: सर सर मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा सर।
1: क्या बात है, इतने परेशान क्यों?
0: सर पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं सर, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं नौकरी नहीं करूंगा, आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए सर।
1: अरे आज पहले दिन इस्तीफे की बात कर रहे हो?
0: अरे सर पहले दिन ही मैं तो बहुत परेशान हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा, आप तो आज ही इस्तीफा ले लीजिए।
1: ठीक है अपना इस्तीफा दे दीजिए और चार्ज भी दे दीजिए।
0: ठीक है सर ले लीजिए।
1: तो बताइए भोपाल वाली ट्रेन गई क्या?
0: हाँ गई है।
8: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
9: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
10: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
11: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं नाटक पुनर्जीवन।
12: प्रस्तुत है नाटक पुनर्जीवन, लेखिका सुधा जौहरी।

0: पंडित जी, पंडित जी जरा बड़ा पानी देना।
1: लो भाई रामलाल, पानी पी लो।
2: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, मैं जरा पीठ पर हाथ फेर देता हूँ। देखो ना किशन, रामलाल जी को खांसी के द्वारा शुरू होता है तो वरी रुकता नहीं है।
1: हाँ पंडित जी सही कह रहे हो। अब मैं कल ले गया था इनको डॉक्टर के पास, उन्होंने दवा भी दे दी थी, लेकिन
0: अब ठीक है।
2: ठीक है पंडित,
0: अब ठीक है। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, सच्चाई तो ये है कि अब उम्र हो गई है। हमारी फाइल काफी दिन चल चुकी, 85 के होने को आए हैं। बस बस यम देवता का हरकारा आने ही वाला है।
1: ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हो रामलाल जी आप?
0: अरे और क्या कहें किशन, कोई अमृत चक्कर या काले कौवे खाकर थोड़े ही आए हैं। जो दिन निकल रहे हैं सो निकल रहे हैं। बस चल देंगे तुम सबको टाटा बाय बाय करके।
1: देखो पंडित जी, ये कैसी कैसी कैसी कैसी बात कर रहे हैं।
0: अरे किसान, सच्चाई को रेशम में लपेट देने से सच्चाई छुप नहीं जाती भैया। अब सचमुच अपने चला चली के डेरे हैं।
2: रामलाल जी, मैं तो कहता हूं दोनों में से किसी बेटे को क्यों नहीं बुला लेते, या आप उनके पास चले जाओ, हैं, परिवार के साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा।
0: ना पंडित जी, ना ना, कहाँ चला जाऊं? हाँ, अमेरिका, जहां बड़ा बेटा डॉक्टर है और छोटे के पास जो मर्चेंट नेवी में है, आज फ्रांस में तो कल मोरक्को में, उन दोनों के अपने परिवार हैं, अपनी दुनिया है, लेकिन मेरी दुनिया बस उस सामने वाले घर में सिमट कर रह गई है। मेरा परिवार तुम ही लोग हो।
1: फिर भी देखो, भाभी थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था रामलाल जी, लेकिन अब बेटों के पास।
0: देखो पंडित, देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे बेटे कुपात्र हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनकी अपनी दुनिया है। किससे फुर्सत है जो मुझ बूढ़े के साथ कुछ समय बिताएं, हैं? अपनी कहें मेरी सुने। अरे भैया सच पूछो तो मुझे भी वहां घुटन सी महसूस होती है। यहां तुम लोगों के साथ खुलावट लगती है, अपनापन।
1: पर अकेले घर में रामलाल जी?
0: नहीं किशन, घर के हर कोने में, दीवारों खिड़कियों तक में तुम्हारी भाभी की याद चुबसी हुई है। अरे भैया अकेला कहाँ हूं मैं?
2: देखो रामलाल जी, भाई हम ठहरे संस्कारी पंडित, अरे ये तो सोचो, भगवान न करे कल को तुम्हें कुछ हो गया तो भाई कौन करेगा तुम्हारा अंतिम संस्कार, है? तुम्हें पुत्र होते हुए भी
0: मुखाग्नि देकर देह को अग्नि समर्पण की बात कर रहे हो ना पंडित? और अगर मैं कहूं कि मेरी देह अग्नि को समर्पित करने की आवश्यकता ही नहीं है तो?
1: अरे ये क्या बात कर रहे हो रामलाल जी? अंतिम बिस्तर तो लकड़ियों की चिताब।
0: नहीं नहीं किशन, नहीं, मेरा दूसरा मतलब है। देखो पशुओं के मरने पर भी उनकी देह कितनी काम आती है, खाल का चमड़ा, हड्डियों से अन्य वस्तुएं।
1: अब भाई आपकी खाल इतनी मोटी तो नहीं है ना कि चमड़ा बन सके, हैं?
0: तुम लोग गलत समझ रहे हो भैया, मैं अपना शरीर अनुसंधान संस्थान को दान कर चुका हूँ।
1: अनुसंधान संस्थान को दान कर चुके?
0: हाँ पंडित जी, हाँ किशन, वे लोग मानव के और अधिक विकास के लिए दिन रात प्रयोग में लगे हुए हैं। सोचो जरा, अगर मेरा ये नश्वर शरीर उन वैज्ञानिकों के काम आ जाए और उससे मानव जाति प्रगति कर सके तो इसमें बुराई क्या है भला?
1: भाई देखो रामलाल जी, वो सब तो ठीक है, परंतु तुम्हारा शरीर।
0: अरे पंछी उड़े पीछे पुराने जर्जर पिंजरे का क्या मोल। मैं इस आशय का पत्र संस्थान को भेज चुका हूं, उसकी 3 प्रतियां हैं, एक मेरे सिरहाने रामायण में रखी है, दूसरी 2 मेरे पुत्रों के नाम बंद लिफाफों में है। तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है, सगे भाइयों और बेटों से बढ़कर हो। रामायण वाले प्रति में संस्थान का फोन नंबर है, बस फोन कर देना, उनकी गाड़ी आकर मेरा शरीर ले जाएगी। बोलो, करोगे ना?
2: अच्छा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो रामजल जी, आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी।
3: हेलो हेलो, जस्ट अ सेकेंड, डॉक्टर मधु।
4: हाँ?
3: रामलाल जी के घर से फोन है, उनकी डेथ हो गई है तो शायद बॉडी के चक्कर में कोई बात है, प्लीज आप बात कीजिए।
4: हाँ हाँ, दो। हेलो, कौन? रामलाल? रामलाल, जस्ट अ सेकेंड, मैं कंप्यूटर पर देखती हूँ। ओ यस यस यस यस, श्री रामलाल, मकान नंबर 511, गली नंबर 6, आदर्श नगर। जी जी जी, इनकी डेथ कब हुई? आधा घंटा पहले। ठीक है, 20 मिनट में हमारी पिकअप वहां पहुंच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बॉडी को बिल्कुल मत छेड़िएगा, हमारी टीम उनको वहां आकर एक इंजेक्शन देगी, बॉडी को हम गाड़ी में रख लेंगे, आप कुछ मत कीजिएगा। बस बस बस, जी जी, थैंक यू वेरी मच। ड्राइवर, अपनी वैन निकालो जल्दी, और ये कंप्यूटर स्क्रीन पर एड्रेस है, इसे स्कैन करो, लेके जाओ, तुम और वो नए यंगर डॉक्टर है ना, डॉक्टर योगेश।
5: यस सर।
4: हाँ, दोनों फौरन जाओ, हम यहाँ तैयारी करते हैं। और डॉक्टर डेविड कहाँ है?
5: हेलो डॉक्टर मधु, हेलो। ओ आई एम सॉरी, आई एम टू लेट। व्हाट हैपेंड डॉक्टर मधु, इतना एक्साइटमेंट?
4: सर, जैसा बॉडी हम लोग चाह रहे थे वो आ रहा है। उम्र 85, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे कोई मेजर पार्ट डैमेज हुआ हो, नेचुरल डेथ।
5: वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर मधु, 250 साल बाद लोग हमें याद करेंगे। इस काम की शुरुआत डॉक्टर एल्बर्ट डेविड ने की थी। यू नो डॉक्टर मधु, इस पूरी प्रोसेसिंग में हमें 250 साल लगेंगे।
4: 250 साल?
5: Yes.
4: क्या इतने अरसे बाद ये रामलाल, whoever he is, वापस जिंदा हो जाएगा?
5: Yes, डॉक्टर मधु, yes. अगर सब कुछ सही तरीके से होता रहा और हमारी प्रगति लगातार चलती रही तो आई एम श्योर।
4: सर, आपका नाम तो सब लेंगे, लेकिन मेरा नाम?
5: क्यों नहीं डॉक्टर मधु, कंप्यूटर पर डिटेल्स डाल दो कि इस काम को डॉक्टर एल्बर्ट डेविड और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर मधु सक्सेना ने शुरू किया है? एंड टेक एक्शन, बॉडी कितनी देर में आ जाएगी?
4: सर, करना क्या है, बॉडी आने ही वाली है।
5: हाँ, सुनो, लैब में चलो, सबसे पहले हम उस बॉडी का सारा खून सिरिंज से बाहर करेंगे और उसकी जगह वो रेड बॉटल में जो वो एक लिक्विड है उसे इंजेक्ट कर देंगे।
4: जी सर।
5: और शरीर को तरल नाइट्रोजन के जार में पैक कर देंगे।
4: ओके सर। सर, लगता है रामलाल का बॉडी आ गया।
5: वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन।

0: सर, ये भावुकता, भावना, इमोशन, ये सब क्या होते हैं सर?
1: रियली आई डोंट नो भाई, मुझे पता नहीं, पर हाँ पुरानी बुक्स में इन सब चीजों का जिक्र होता है। एक्चुअली वी ऑल आर वेल डेवलप्ड ह्यूमंस, जैसे हम लोग सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर चुके हैं क्योंकि वे तकलीफ देती थी, इसी तरह हम लोग भावना, इमोशंस और वो क्या कहलाती है, फीलिंग्स, उन सब पर भी विजय हासिल कर चुके हैं।
2: ये देखिए सर, लैब में पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है।
1: गुड, चलो अब शुरू करते हैं, इनको बाहर निकालो।
2: यस सर।
1: सबसे पहले इनकी नसों यानी वेन्स में भरा लिक्विड निकालकर, वो नैनोबॉट्स वाला आर्टिफिशियल ब्लड है ना, वो शरीर में डालो।
2: ओके सर।
0: ओके सर। ओके
2: सर। सर, ये इतनी सुकड़ी सुकड़ाई से क्यों है?
1: ओहो भाई, ओल्ड एज, ये सब ओल्ड एज की वजह से है।
2: वो एक्चुअली में सर, अब तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं ना, और हमने तो कभी देखा ही नहीं, इसलिए ये रामलाल ऐसे ही रहेंगे।
1: नहीं नहीं, एक बार ये जिंदा हो जाए फिर इनका काफी कुछ बदलना पड़ेगा। ओ यस, वो खून वाला काम हो गया ना?
2: ओके सर, बिल्कुल हो गया सर।
1: अब मैं सिर पकड़ता हूँ, तुम लोग इनके ब्रेन को इलेक्ट्रिक शॉक भेजो।
2: यस सर।
1: जिससे इनका ब्रेन एक बार फिर से काम करना शुरू कर दे। वो ग्रीन स्विच ऑन करो।
2: यस सर।
1: ओ, नैनोमीटर ऑन करो।
0: सर, सर लगता है कि ब्रेन तरंगे ग्रहण कर रहा है, स्क्रीन पर तरंगों वाली रेखाओं में हल्की सी गति दिखाई दे रही है।
1: हाँ।
0: सर, ब्रेन मुझे लग रहा है सक्रिय हो रहा है सर।
1: हाँ, कुछ ही समय में नर्वस सिस्टम, यू नो, स्नायु मंडल सक्रिय हो जाएगा और शरीर के ऑर्गन्स को नेसेसरी आदेश भेजना शुरू कर देगा। देखो, ये देखो, रामलाल की पलकों में हरकत हो रही है।
2: यस सर। यस सर, इन्होंने आंखें भी खोल दी हैं और शरीर के दूसरे अंग भी हरकत कर रहे हैं। सर,
1: मैं
2: शायद कुछ बोलना चाहते हैं।
1: हाँ हाँ, कोशिश करिए, बोलिए। आप रिसर्च सेंटर में हैं?
2: ओह, अनुसंधान संस्थान में हैं।
1: हाँ,
3: अनुसंधान संस्थान, मैं मुझे कौन लाया?
1: जैनी, जरा चेक करके बताओ।
0: यस डॉक्टर, जस्ट अ सेकेंड। ये रही सारी डिटेल्स, नाम रामलाल, जन्म का साल 1924, डेथ 2009, जेनी एड्रेस?
2: एड्रेस है मकान नंबर 511, गली नंबर 6, आदर्श नगर, और डेथ के 6 महीने पहले शरीर अनुसंधान केंद्र को दान का पत्र भेजा गया।
0: और बॉडी लेकर कोई पंडित दीनानाथ और किशनलाल आए थे।
3: दीनानाथ, पंडित, किशन, सब याद आ रहा है। कहाँ है पंडित जी और किशन कहाँ?
1: उन्हें मरे तो बहुत अरसा बीत गया है।
3: मरे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, मेरी मृत्यु हो गई थी पर मैं जीवित हूँ और आप कहते हैं मेरे मित्र।
1: जैनी, तुम इन्हें समझाओ और जो भी इनकी मदद हो सकती है करो। भाई, मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है। हाँ, इन्हें कुछ पैसे भी दे देना।
0: ऑफ कोर्स सर। रामलाल जी, आपको पता है कि कौन सा वर्ष चल रहा है?
3: कौन सा नहीं,
0: ये सन 2250 है और आपकी डेथ हुए 241 साल हो चुके हैं रामलाल जी।
3: हाँ, 241, क्या कह रही हो? लगभग 250 सदी।
2: बिल्कुल, ये देखिए साइंस ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है कि आप जीवित हो गए हैं।
3: वाकई चमत्कार, मैं जीवित हो गया। ओह, मैं जीवित हो गया। इतने वर्षों बाद मैं पूरा जीवित हो गया। पर थोड़ी कमजोरी लग रही है। जोड़ पूरी तरह

0: पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जिस मकान में आप रहते थे उसमें आपकी नवी पीढ़ी का एक सदस्य परमेंद्र रहता है अपने बेटे और पोते के साथ।
1: मेरा अपना खून, मेरी नवी दसवीं और ग्यारहवीं पीढ़ी। धन्यवाद जैनी, धन्यवाद।
2: रामलाल जी, बाहर निकलने से पहले ये चश्मा, ऑक्सीजन मास्क और ये विशेष छाता जरूर ले जाइए।
1: पर क्यों ये सब चीजें?
0: हवा अब वैसी शुद्ध नहीं रही जैसी 250 साल पहले थी। बहुत पॉल्यूशन है बाहर, ओजोन परत तो जैसे समाप्त ही हो चुकी है।
2: रामलाल जी, धूप की गर्मी और चमक असहनीय है, इसीलिए इस चश्मे और छाते की जरूरत पड़ेगी। ओके रामलाल जी, गुड लक। और हाँ, हर तीसरे दिन चेकअप के लिए आपको आना पड़ेगा, ठीक है? टैक्सी ले लीजिएगा।
1: हाँ,
2: आते रहिएगा।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जैनी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत मदद की। मेरी नवी पीढ़ी कैसी होगी?

0: हे भगवान, क्या ये वही शहर है जिसमें मैं 250 साल पहले रहता था? ये गगनचुंबी इमारतें, अजीब अजीब सी गोल गोल गाड़ियां, पशु पक्षी तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, न हरियाली है, अब मनुष्य भी कुछ कुछ अजीब से लग रहे हैं, मानो इंसान नहीं चलते फिरते रोबोट हों। वो सामने एक गोलाकार वाहन खड़ा है जिस पर टैक्सी लिखा है, चलो उसी में चलते हैं। जेनी ने कहा था टैक्सी कर लेना। शरीर में कुछ अकड़न सी भी है, हाँ चलता हूं। क्यों भाई, अब टैक्सी खाली है?
1: Why not? भाई तो भाई, आप इतने ओल्ड क्यों हैं?
0: क्या मतलब? अरे भैया, बूढ़े तो सभी होते हैं।
1: अब कौन ओल्ड होता है? स्किन, आईज, माइंड, आई मीन दिमाग, कोई भी बॉडी का पार्ट हो बदलवा लो। हाँ?
0: और वो पुराना अंग,
1: उसका ऑर्गेनिक मेन्योर बन जाता है, आई मीन जैविक खाद। बाय द वे, वेयर विल यू गो, कहाँ चला है?
0: हाँ, मुझे वो आदर्श नगर।
1: ओ, यू मीन मोरल सिटी। ओके ओके ओके, आप ये स्मॉल स्क्रीन है, इस पर अपना एड्रेस लिख दीजिए।
0: एड्रेस लिख दूं?
1: यस।
0: फिर क्या होगा?
1: अब मेरे सामने यहाँ से वहाँ तक के रास्ते का पूरा पिक्चर आ जाएगा। मैं बस सड़क के चित्र पर ये मैग्नेट चलाऊंगा और टैक्सी ऑटोमेटिकली यानी स्वचालित रूप से सड़क पर चलती रहेगी।
0: पर वो एक्सीडेंट हो गया?
1: अब एक्सीडेंट नहीं होते, सब अपनी अपनी लेन में है। वो देखिए, ऊपर रेड, ब्लू, येलो एयर कार्स, इनमें बच्चे स्कूल जाते हैं, सबकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है। अब ये लीजिए, आपका घर आ गया।
0: हाँ? घर आ गया इतनी जल्दी?
1: यस, हम लोग कम से कम 200 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं।
0: अरे ठीक है भैया, ठीक है। ये लो पैसे।
1: थैंक यू।
0: अच्छा भैया,

0: ओह, मेरा घर, मेरा घर, ये बाहर शायद
1: अब रामलाल है ना, मेरी 9 पीढ़ी पुराने ग्रैंडपा।
0: हाँ बेटा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तुम परमानंद हो ना?
1: यस, फोन आया था रिसर्च सेंटर वालों का। कम इनसाइड।
0: हो, तभी। और बहू, हाँ, और तुम्हारा बेटा और मेरा पोता कहाँ है सब?
1: आ जाएंगे अभी, दे आर गोइंग टू कम, आने वाले हैं। इस सेंटर वालों ने आपकी स्किन और बॉडी पार्ट्स को चेंज नहीं किया ग्रैंडपा, आप काम कैसे करेंगे?
0: हाँ? काम? मगर बेटा, अब काम और इस उम्र में?
1: ग्रैंडपा, काम करके कुछ अर्न तो करना ही होगा, उसमें एज क्या करेगी? आज के टाइम में सरवाइव करना बहुत कठिन है।
0: अच्छा, तुम क्या करते हो?
1: मैं काम ही कहाँ है ग्रैंडपा, सब कुछ ऑटोमेटिक है, मैक्सिमम काम रोबोट्स करते हैं, और जिनके पास लैंड यानी जमीन है वे फिर भी काफी कुछ कर लेते हैं, पर आपने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है, बस ये 2 रूम फ्लैट, क्या करें, एक रूम में रहते हैं और एक को लैब बना रखा है।
0: वो तो ठीक है, पर लैब में
1: वो मेंस का जो स्पर्म यानी पुरुषों का जो शुक्राणु होता है ना, उसको इकट्ठा करता है, जो लोग प्रजनन शक्ति खो चुके हैं उन्हें आवश्यकता पड़ती है। ग्रैंडपा, मीट माय वाइफ, ये मेरी पत्नी है, आपके लिए ब्रेकफास्ट बना खिलाई है। हा ब्रेकफास्ट ग्रैंडपा, इससे आपको एनर्जी मिलेगी।
0: पर बेटा, ये है क्या है ये? और वो बहू ऐसे चुपचाप नाश्ता रखकर क्यों चली गई?
1: ग्रैंडपा, उसे कुछ पार्ट्स का ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी पूरा ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा, और ये जो ब्रेकफास्ट है, आजकल सब वेजिटेबल्स लैब में उगाई जाती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज के कारण खेतों में उग नहीं सकती, इसलिए बहुत कॉस्टली है, और ग्रेन्स में भी न्यूट्रिशंस नहीं बचे हैं ग्रैंडपा।
0: तो फिर ये भोजन?
1: पोषक तत्व तो चाहिए ना ग्रैंडपा, आजकल महिलाओं में अबॉर्शन करवाने की प्रवृत्ति बहुत है, उसी अबॉर्टेड फीटस की कोशिकाओं में पोषक तत्व भारी मात्रा में होते हैं, भोजन में उन्हीं का प्रयोग करते हैं ग्रैंडपा। आप खाइए ना ग्रैंडपा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा।
0: हे राम, अब सुनो बेटा, मुझे भूख नहीं है, अब वो पानी।
1: हाँ, वाटर है ना ग्रैंडपा? ग्रैंडपा, आजकल हर घर में रिसाइक्लिंग प्लांट लगा हुआ है, घर का, बाथरूम का, सीवर का सारा पानी रिसाइकिल करके काम में लेते हैं।
0: सुनो बेटा, नहीं, रहने दो, ऐसे ही ठीक है।
1: और ये लीजिए, मेरा सन और ग्रैंड डॉटर भी आ गए हैं।
2: हाय डैड, हाउ आर यू?
3: ओह, तो ये है हमारे बड़े बुजुर्ग यानी एंशिएंट दादाजी। ये
4: व्हाट अ अग्ली मैन, कितना गंद है, इन्हें अपने घर में किसने घोसने दिया? ओह, आई एम गोइंग टू प्ले, इन्हें घर से जल्दी निकालो प्लीज। ओह
1: सॉरी ग्रैंडपा, वो बच्चा है ना, उसने कभी किसी ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी को देखा नहीं, इसलिए सॉरी।
3: बुजुर्ग दादाजी, क्या इरादा है आपका? या तो अपने सारे अंग बदलवा लीजिए, वरना आप जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे आप।
0: तुम करते क्या हो बेटा?
3: ओह माय ग्रैंड दादाजी, यू नो आजकल जो है

0: डेड बॉडीज का कार्बनिक खाद बनाने का धंधा काफी चलता है। मैं जो है उसमें खाद फैक्ट्री में लाशें जो होते हैं बॉडीज जो है डेड बॉडीज उसका सप्लाई करता है।
1: ओ, तो तुम सोच रहे हो कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश भी?
0: मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ, पर इन केस आप अरे आप कहाँ चल दिए? ग्रैंड दादाजी, डैडी प्लीज रोके ने, ये कहाँ जा रहे हैं?
2: जाने दो, हमारे पास इनकी जगह कहाँ है जहाँ ये रहते? कहीं यूं ही मार खप जाएंगे।
1: हे प्रभु, ये दुनिया को क्या हो गया? प्रभु, मैंने अपना शरीर दान किया था मानव के विकास में सहायक होने के लिए। मानता हूं विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, पर ये कैसा विकास है, भावनाहीन, मानवताहीन।

0: जाता तो मैं जाता तो मैं वहीं घर पर भूल आया। हाँ घर, हाँ घर घर घर कैसा घर, कैसा घर, क्या क्या वास्तव में वो मेरा घर था, क्या सचमुच सचमुच वे हृदयहीन मेरे वंशज थे जो मेरी लाश का व्यापार करने से भी नहीं चूकते। शायद शायद ये अम्ल की वर्षा है जो मेरी जर्जर त्वचा पर अंगारों से बरस रही है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कहां जाऊं कहां जाऊं। अरे ये सामने सामने इतनी आग कैसे जल रही है? हो कचरा जलाने का संयंत्र है। अग्नि अग्नि सर्वभक्षी अग्नि सर्वभक्षी अग्नि। एक बार इस अग्नि का मान रखते हुए मैंने शरीर लैब को समर्पित कर दिया था, पर आज इन लपटों में आह्वान है, इन लपटों में आह्वान है, निमंत्रण है, मुक्ति का मार्ग है। हाँ हाँ मुक्ति का मार्ग। हे अग्नि आज तुझे मैं ये जर्जर शरीर, व्यथित मन, घायल आत्मा, सब कुछ समर्पित करता हूं, सब कुछ समर्पित करता हूं, सब कुछ समर्पित करता हूं। मुझे भस्म करके कष्ट मुक्त कर दो मां, मुझे भस्म करके कष्ट मुक्त कर दो मां, मुझे कष्ट मुक्त कर दो मां।
1: I think he's dead. He's dead now. He is no more.
2: Oh, God.

0: अभी आपने सुना नाटक पुनर्जीवन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे ईश्वर दत्त माथुर, नंदलाल शर्मा, मंजुल मुकुल, अनिल मारवाड़ी, सर्वेश व्यास, डॉक्टर रानी दाधीच, तरुण व्यास, प्रिया शर्मा, पूजा हाड़ा, संजय पारिक और दिलीप सिंह नरुका। नाटक की लेखिका थी श्रीमती सुधा जौहरी। निर्देशन किया H.S. व्यास ने।
1: ये प्रस्तुति आकाशवाणी जयपुर केंद्र की है।
2: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
5: अभी आप सुन रहे थे नाटक पुनर्जीवन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं वार्ता। विषय है विश्व आदिवासी दिवस। वार्ताकार होंगी प्रोफेसर वंदना बरमेजा।
6: नमस्कार आकाशवाणी के सुधी श्रोताओं, आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस। यह तारीख किसी युद्ध की नहीं है, किसी संधि की नहीं, यह तारीख एक बैठक की है। सन 1982 में आज के दिन जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र की एक कार्य समिति पहली बार बैठी थी दुनिया के मूल निवासियों के प्रश्न पर। 12 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी दिन को उन समाजों के नाम समर्पित कर दिया जो हर देश में सबसे पहले आए थे और अक्सर सबसे बाद में गिने गए। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने जो विषय चुना है वह मन को छू लेने वाला है, स्वदेशी दाइयों का सम्मान। सोचिए, दाई वे हाथ जो नवजात को इस दुनिया में सबसे पहले छूते हैं, जिनका नाम किसी प्रमाण पत्र पर नहीं लिखा जाता, पर जिनके बिना कोई नाम लिखा ही नहीं जाता। मुझे लगता है आदिवासी समाज स्वयं इस सभ्यता का दाई कर्म करता आया है। उसने केवल शिशुओं को नहीं जन्माया, उसने जंगल को, नदी को, बीज को संभाला और संभाल कर हमें सौंप दिया, बदले में कुछ मांगा नहीं। पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ है, देश का लगभग 8.5% और 700 से अधिक जनजातियां हैं। इस आंकड़े को जरा पलट कर देखिए श्रोताओं, इसका अर्थ है कि भारत में आदिवासी समाज कोई एक समाज नहीं है, वे 700 से अधिक समाज हैं, 700 से अधिक भाषाई और सांस्कृतिक संसार। हम एक शब्द में जिन्हें समेट देते हैं वे वस्तुतः एक महाद्वीप है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 92 लाख लोग अनुसूचित जनजातियों से हैं, यानी हर 100 राजस्थानियों में लगभग 13.5। हमारे राज्य में 12 जनजातियां हैं, भील, मीणा, गरासिया, डामोर, सहरिया, कथौड़ी, धानका, पटेले और अन्य। इनका मुख्य क्षेत्र दक्षिण राजस्थान है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और दक्षिण पूर्व में बारा, कोटा, झालावाड़। इस भूभाग का एक नाम है वागड़। कहा जाता है यह नाम बांस के वनों से आया। अरावली की ढलाने, माही, सोम और जाखम की धाराएं और उन ढलानों पर बिखरे हुए छोटे छोटे गांव। अब चलिए इसी दक्षिण राजस्थान की एक पहाड़ी पर, बांसवाड़ा जिला, राजस्थान और गुजरात की सीमा। पहाड़ी का नाम मानगढ़। तारीख 17 नवंबर 1913, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। उस दिन पहाड़ी पर हजारों भील एकत्र थे और उनके बीच एक संत बैठे थे, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने उससे 30 बरस पहले सन 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। संप अर्थात एकता, मेल। उनका कार्यक्रम बहुत सीधा था, शराब छोड़ो, बेगार मत दो, बेटियों को पढ़ाओ और अपनी धुनी के आगे बैठकर स्वयं को शुद्ध करो। धुनी वह पवित्र अग्नि जिसके सामने बैठकर भील अपनी प्रतिज्ञा दोहराते थे। यह हथियारबंद विद्रोह नहीं था श्रोताओं, यह प्रार्थना और प्रतिज्ञा का आंदोलन था। भीलों ने अपनी मांगे रखी, बेगार बंद हो, अनुचित कर हटे, जंगल पर हमारा हक बना रहे। उत्तर गोलियों में आया। ब्रिटिश भारतीय सेना और आसपास की रियासतों के सैनिक बलों ने उस निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई। लोक स्मृति कहती है लगभग 1500 मारे गए, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है, यह संख्या मुख्यतः मौखिक परंपरा में सुरक्षित है, अभिलेखों में इस पर मतभेद है। पर ध्यान दीजिए, मतभेद संख्या पर है, घटना पर नहीं। और इतिहास में कभी कभी संख्या से बड़ा सत्य होता है स्मृति। मानगढ़ को आज आदिवासी

जलियांवाला कहा जाता है, पर एक बात पर गौर कीजिए, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, मानगढ़ उसे 6 वर्ष पहले। जो पहले घटा वह हमारी स्मृति में बाद में आया। यह हमारे इतिहास लेखन की चूक है और साहित्य के अध्यापन से जुड़े व्यक्ति के लिए यह चूक और भी चुभती है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में नहीं आता वह अगली पीढ़ी की कल्पना में भी नहीं आता। इसी माटी से एक नाम और उठा, मोतीलाल तेजावत। उदयपुर के झाड़ोल के पास कोल्यारी गांव के एक बनिया, जिन्हें भीलों ने अपना बाऊजी कह दिया, उन्होंने आंदोलन चलाया और भीलों की मांगों को मेवाड़ की पुकार नाम देकर महाराणा के सामने रखा। 1922 में नीमड़ा में उन पर भी गोलियां चली। और यह कहानी अकेली कहानी नहीं है। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने उल गुलान का शंख फूका। उल गुलान अर्थात महाविद्रोह। संथाल परगना में सिद्धू और कान्हू उठे, भागलपुर की पहाड़ियों में तिलका मांझी, और निमाड़ के जंगलों में एक भील था, टांटिया भील, जिसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अंत में फांसी दी और जिसे लोक ने अपना नायक बना लिया। ध्यान दीजिए श्रोताओं, मानगढ़ की धुनी अकेली नहीं जल रही थी, हिंदुस्तान के जंगलों में एक ही समय में कई धुनियाँ जल रही थी। उनमें से एक हमारी पहाड़ी पर थी। आज मानगढ़ राष्ट्र का सम्मान, श्रद्धांजलि स्थल है, पर श्रद्धांजलि का अर्थ केवल पत्थर नहीं होता, अर्थ होता है याद रखना। अब इतिहास से आगे बढ़कर उस संस्कृति में चलिए जो इस समाज ने बचा कर रखी है। श्रावण बीतते ही मेवाड़ के भील गांवों में गवरी शुरू होती है, 1.25 महीने चलने वाला लोकनाट्य। कथा शिव, पार्वती और भस्मासुर की, मुख्य पात्र राई और बुढ़िया, वाद्य मांदल और थाली। सारे स्त्री पात्र पुरुष निभाते हैं और नियम ऐसे कठोर कि कलाकार 1.25 महीने नंगे पैर रहते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, मांस और मदिरा से दूर रहते हैं। साहित्य की दृष्टि से देखिए, गौरी लोकनाट्य नहीं है, गौरी लोक का महाकाव्य है। एक ऐसा महाकाव्य जो लिखा नहीं गया, जिया गया। और उसका मूल स्वर क्या है? दो बातें, प्रकृति की रक्षा और स्त्री का सम्मान। गौरी में गौरी भीलों की बहन है, बेटी है। माघ में डूंगरपुर के पास सोम, माही और जाखम, तीन नदियां जहां मिलती है वहां बैणेश्वर का मेला भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इस संगम में प्रवाहित करते हैं। कोई निमंत्रण नहीं जाता, कोई प्रचार नहीं होता, पर मेला भर जाता है। और भोपा, वह लोक गायक पुरोहित जो रात भर रावण हत्था बजाकर फड़के आगे बाबूजी और देवनारायण की गाथा गाता है, हमारे यहाँ महाकाव्य पुस्तकालय में नहीं, रात के अंधेरे में जीवित रहा। एक नाम और, राणा पूंजा। हल्दी घाटी में भील योद्धाओं के नेता, मेवाड़ के राज चिन्ह में आज भी एक ओर राजपूत योद्धा है, दूसरी ओर भील। यह अंकन प्रलेखित है और परंपरा कहती है कि राज तिलक भील के रक्त से होता था। यह परंपरा है, सिद्ध इतिहास नहीं, पर परंपराएं भी बताती है कि मेवाड़ जानता था उसकी नींव में भील का खून है। अब उस प्रश्न पर जो मेरे अपने विषय का प्रश्न है, साहित्य का। पिछले 3 दशकों में हिंदी में एक नई धारा बनी है, आदिवासी विमर्श। इसका मूल प्रश्न बहुत तीखा है, विकास किसका और किसकी कीमत पर। यह विमर्श कहता है कि आदिवासी दृष्टि में सृष्टि के केंद्र में मनुष्य नहीं है, मनुष्य सृष्टि के अनेक जीवों में एक है। यह वाक्य आज पर्यावरण सम्मेलनों में किसी नई खोज की तरह पढ़ा जाता है। आदिवासी इसे सदियों से जी रहा है। संथाली कवि निर्मला पुतुल की पंक्तियां हैं, एक बेटी अपने पिता से कहती हैं, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े। और उसी कविता में वह यह भी कहती है, मत ब्याहना उस देश में, मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज़्यादा ईश्वर बसते हों। इन पंक्तियों में जो है वह केवल करुणा नहीं है, वह एक पूरी सभ्यता समीक्षा है। आइए इस 9 अगस्त को इतना संकल्प करें कि उनका

0: नाच हम देखें और उनकी बात सुनें। नमस्कार।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: अभी आप सुन रहे थे वार्ता। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं विश्व दर्पण। कृपया प्रतीक्षा करें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने के चीन के फैसले को रद्द किया। अमरीका में नए नियम के अंतर्गत H-1B वीजा धारकों पर नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन की समय सीमा समाप्त होने का खतरा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिसाइल रोधी प्रणाली की नियमित आपूर्ति के लिए समझौता और भारत की अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने के चीन के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि चीन का ये कदम फिलीपींस के मछुआरों को उनके पारंपरिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में जाने से रोक सकता है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका ने कहा है कि वह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के फिलीपींस के साथ खड़ा है। चीन ने 1 अगस्त को स्कारबोरो रीफ के प्रबंधन के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग और निगरानी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वहीं 2016 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत गठित न्यायाधीशों की समिति ने कहा था कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों पर चीन के ऐतिहासिक अधिकारों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि चीन ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं टीना।
5: अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस की प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की नियमित आपूर्ति को लेकर एक समझौता हुआ है। एक रिपोर्ट।
7: सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पत्रकारों से बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन को हर महीने इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आपूर्ति देश की वायु रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को 2026 में मिलने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या 2025 की तुलना में कम होगी। श्री ज़ेलेंस्की ने कल सर्बिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। बेलग्रेड में ज़ेलेंस्की और उनके सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ बैठक के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि दोनों देश यूरोपीय संघ में शामिल

0: होने के साझा लक्ष्य पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वर्ष के अंत तक एक पारस्परिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का भी प्रयास करेंगे। सर्बिया की सरकार ने यूक्रेन को अतिरिक्त मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को हथियारों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति तेज करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा उद्योग के अधिकारियों को 21 दिन के भीतर उत्पादन बढ़ाने और हथियारों की जल्द आपूर्ति के लिए योजना तैयार करके देने को कहा गया है। पेंटागन पैट्रियट और थार जैसी मिसाइल प्रणालियों के भंडार को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद अमेरिका के पैट्रियट मिसाइलों के भंडार में बड़ी कमी आई है। हालांकि हथियारों का उत्पादन बढ़ाने की इन योजनाओं के लिए अमेरिकी कांग्रेस से धनराशि मिलना जरूरी है। कांग्रेस में करीब $1.15 trillion का रक्षा बजट विधेयक अभी अटका हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकन ने कहा है कि अमेरिका के साथ शांति और बातचीत जारी रखी जाएगी। हालांकि इसके लिए अमेरिका को दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल बनाना होगा। श्री पजिशकन ने कहा कि समझौते का ये सही समय है। उन्होंने साफ किया कि ईरान अमेरिका के कदमों के अनुसार ही अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएगा। इससे पहले भी पजिशकन ने कहा था कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखेगा, लेकिन किसी भी दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जून में ईरान और अमेरिका ने युद्ध समाप्त करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते के लिए बातचीत होनी थी। हालांकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इन वार्ताओं का भविष्य फिलहाल अनिश्चित है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में असम की अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 3 गेमों के मुकाबले में 14-21, 21-14 से हराया। पहला गेम गंवाने के बाद अश्मिता ने जोरदार वापसी की और 53 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। ये अश्मिता का पहला BWF खिताब है। इससे पहले अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21, 21-13 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं हान चियानशी ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को 22-20, 18-21 और 21-14 से मात दी थी। अश्मिता ने इससे पहले 2024 एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी उन्होंने महिला सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उधर चीन के हेफेई में आयोजित 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने भी कल अंडर 31 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पहले चरण के खेले गए मुकाबले में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से शीर्ष 14 जोड़ियां फ्लाइट ए में पहुंच गईं। भारतीय जोड़ी भी इसमें शामिल रही। इसके बाद राउंड रॉबिन में सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्रोएशिया के एम फेरेनेका और एस कटुसिचिक ने दूसरा स्थान और चीन के जेहान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
1: पश्चिमी कनाडा के ओकानागन में तेजी से फैल रही जंगल की आग से कई लोग प्रभावित हुए हैं। इससे लगभग 20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तेज हवाओं और शुष्क मौसम के कारण आग बेकाबू हो गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के मुख्यमंत्री डेविड एबे ने आपातकाल की घोषणा की है। लगभग 12,000 लोगों की आबादी वाले समरलैंड को रातों रात खाली करने का आदेश दिया गया। साथ ही पास के पीचलैंड और उसके आसपास के लगभग 8,000 लोगों को भी जगह खाली करने को कहा गया है। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकियों ने युगांडा की सीमा से लगे पूर्वी कांगो के एक गांव पर हमला करके 13 लोगों की हत्या कर दी। ये हमला मामबासा के पास बनाना इकोले गांव में हुआ और इसे एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF ने अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई निवासियों से अभी बातचीत नहीं हो पाई है। यमन में मारेब और हदर मौत प्रांतों में हाल ही में हुए हौसी विद्रोहियों के हमलों के जवाब में सशस्त्र बलों ने उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय तनाव के बढ़ते हुए बीच के कारण आया है। इसमें ईरान समर्थित हौसी समूह यमन के अंदर सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है और सऊदी अरब से जुड़े समुद्री ठिकानों पर हमले कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने की

0: उपायों पर चर्चा की। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो रीफ को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र बनाने की चीन के फैसले को रद्द किया। अमेरिका में नए नियम के अंतर्गत H-1B वीजा धारकों पर नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन की समय सीमा समाप्त होने का खतरा। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिसाइल रोधी प्रणाली की नियमित आपूर्ति के लिए समझौता। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विश्व दर्पण। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हेलो जयपुर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गगन श्रीवास्तवा और आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो जयपुर में। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें वो रास्ता दिखाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक ऐसी बच्ची की जिसके हाथ में कभी किताब नहीं थी, स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन अगर उसके सामने एक पेड़ आ जाए तो वो बता सकती थी कि ये कौन सा पेड़ है, इसके बीज कैसे बचेंगे और इसे दोबारा कैसे उगाया जा सकता है। अजीब लगता है ना, जिस लड़की ने कभी जंगल की किताब नहीं पढ़ी, वही आगे चलकर जंगल की चलती फिरती किताब बन गई। उनका नाम था तुलसी गौड़ा। और आज गेम चेंजर में कहानी उस महिला की जिसने अपना पूरी ज़िंदगी पेड़ों के नाम कर दी। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा पद चाहिए, बहुत पैसा चाहिए या फिर बहुत बड़ी पहचान चाहिए, लेकिन तुलसी गौड़ा की कहानी कहती है कि बदलाव के लिए बस एक चीज़ चाहिए, इरादा। मिलते हैं तुलसी गौड़ा की कहानी के साथ एक छोटे से संगीत विराम के बाद।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
7: एक बार फिर स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गगन श्रीवास्तव। दोस्तों तुलसी गौड़ा का जन्म कर्नाटक के एक गरीब हालांकि आदिवासी परिवार में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई का सवाल ही नहीं था। और फिर बहुत छोटी उम्र से उन्होंने अपनी माँ के साथ एक नर्सरी में काम करना शुरू किया। वहीं जहाँ बाकी लोग सिर्फ पौधे देखते थे, तुलसी उनमें ज़िंदगी देखती थी। उन्हें पता था कौन सा बीज कब बोना है, कौन सी मिट्टी में कौन सा पौधा बेहतर बढ़ेगा और किस पौधे को किस तरह संभालना है। धीरे धीरे जंगल उनका स्कूल बन गया, पेड़ उनकी किताबें और प्रकृति उनकी गुरु। उन्होंने कोई बड़ी डिग्री नहीं ली लेकिन प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान इतना गहरा था कि लोग उन्हें कहने लगे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल की विश्वकोश। लेकिन सवाल ये था, क्या एक गरीब बिना औपचारिक शिक्षा वाली महिला वास्तव में इतना बड़ा बदलाव ला सकती थी? इसका जवाब मिलता है उनकी जिंदगी के अगले पड़ाव में। सुनिए ये मधुर सगी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर और मैं हूं आपका साथी गगन। दोस्तों, तुलसी ओड़ा सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पौधों को उगाया, संभाला और उनकी अगली पीढ़ी तैयार की। वो जंगलों को सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक पूरा परिवार मानती थी। वो जंगल में मदर ट्रीज़ यानी ऐसे पेड़ों को पहचानने में माहिर थीं जिनसे अच्छे बीज लेकर नए पौध तैयार किए जा सके, और यही उनका असली हुनर था। वर्षों तक उन्होंने वन विभाग के साथ काम किया। शुरुआत में वो दैनिक मजदूरी पर काम करती थीं, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी मेहनत और प्रकृति के प्रति उनका समर्पण इतना खास था कि बाद में उन्हें वन विभाग में स्थायी काम मिला। उन्होंने दशकों तक वन संरक्षण में अपना योगदान दिया, पेड़ लगाए, पौधों को बचाया और जंगलों को आग, अवैध कटाई और दूसरी चुनौतियों से बचाने के प्रयासों में योगदान दिया। कहा जाता है उन्होंने हजारों नहीं बल्कि दसियों हजारों पौधों को लगाया और पाला। कुछ स्रोतों में ये संख्या 1 लाख से भी अधिक बताई गई है, लेकिन तुलसी गौड़ा के लिए गिनती कभी मायने नहीं रखती थी। उनके लिए हर पौधा एक भविष्य था। लेकिन अभी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय बाकी था, क्योंकि एक दिन जिस महिला के पैर हमेशा मिट्टी में रहे, उसी के कदम देश के सबसे बड़े सम्मान के मंच तक पहुँचे। कैसे, जानेंगे इस संगीत विराम के बाद।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गगन श्रीवास्तव। दोस्तों सालों तक तुलसी गौड़ा ने बिना किसी बड़े मंच के, बिना किसी प्रचार के अपना काम किया और फिर दुनिया ने उनके काम को पहचानना शुरू किया। उन्हें कई सम्मान मिले और साल 2021 में भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में जब वो सम्मान लेने पहुंची तो उनकी तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। पैरों में चप्पल नहीं, सादा पारंपरिक पहनावा और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास। वो तस्वीर सिर्फ एक पुरस्कार की तस्वीर नहीं थी, वो तस्वीर थी एक ऐसी महिला की जिसने साबित कर दिया था कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, कभी कभी प्रकृति भी अपनी भाषा में हमें पढ़ाती है और तुलसी गौड़ा उस भाषा की एक बेहतरीन छात्रा थी। लेकिन दोस्तों उनकी कहानी का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी नहीं था, उनका असली सम्मान था वो जंगल जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी और वो पेड़ जो आज भी उनकी कहानी सुना रहे हैं। मिलते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, तब तक के लिए मधुर से गाना।

कहते हैं कुछ लोग अपने पीछे इमारतें छोड़ जाते हैं, कुछ लोग अपना नाम छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पीछे एक पूरा जंगल छोड़ जाते हैं। तुलसी गौड़ा उन्हीं लोगों में से एक थीं। उन्होंने हमेशा सिखाया कि आपके पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। आपके पास डिग्री नहीं हो सकती, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आपका छोटा सा प्रयास किसी काम का नहीं, तो एक पौधा लगा कर देखिए। आज वो छोटा होगा, कल पेड़ बनेगा, और शायद परसों किसी अनजान इंसान को छांव देगा। यही तुलसी गौड़ा की ज़िंदगी का संदेश है कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप दुनिया बदलते हुए देखें, कभी कभी बस इतना ज़रूरी है कि आप दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाकर जाएं। दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तो तुलसी गौड़ा को याद कीजिए, क्योंकि उनके पास ना पैसा था, ना बड़ी डिग्री, ना कोई बड़ा पद, लेकिन उनके पास था प्रकृति के लिए प्यार और कुछ करने का जुनून। और शायद यही दो चीज़ें किसी भी इंसान को एक गेम चेंजर बना सकती हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के गेम चेंजर से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गगन श्रीवास्तव आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ और एक नए गेम चेंजर के साथ। तब तक अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाइए। जाते जाते कुछ शब्द आप सभी के लिए। कुछ लोग इतिहास में अपना नाम लिखते हैं और कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि उनका नाम हरियाली बनकर सालों तक जिंदा रहता है। पेड़ तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल उगा जाए, वही असली गेम चेंजर कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास एक पौधे का भी ख्याल रखिए। मैं हूं गगन श्रीवास्तव और आप सुन रहे थे गेम चेंजर। हेलो जयपुर, और इस अंतिम गीत के साथ हेलो जयपुर का इस सेगमेंट यहीं समाप्त होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे हेलो जयपुर, हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पोस्ट बॉक्स, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे बुनकर भाई बहनों का उत्साह वर्धन किया है और हथकरघा जो है उसका महत्व उन्होंने बताया है। साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि समर्पित किया गया है बुनकर भाई बहनों को, उसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूँ आज स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मन की बात का वो हिस्सा जिसमें हमारे बुनकर भाई बहनों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। आज स्टूडियो में हमें समय दिया है हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और विकास आयुक्त हैं हथकरघा से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: नमस्कार।
3: आइए अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन की बात का एक अंश।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
3: तो साथियों, आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उल्लेख करते हुए इसके संदर्भ में बुनकर भाई बहनों के विशेष हितों का भी एक तरह से उल्लेख किया है। तो इस बारे में हम और जानते हैं आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं उस धागे की जो सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता बल्कि भारत की विरासत, संस्कृति और लाखों परिवारों के सपनों को बुनता है। सामाजिक ताने बाने का हिस्सा वो धागा जो हमारी विरासत भी है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है। स्वदेशी आंदोलन से लेकर वैश्विक पहचान तक ये धागा भारत में और भारतीयता भर देता है। महात्मा गांधी ने चरखा चलाते हुए जन जन को जोड़ा और साथ ही स्वदेशी का महत्व बताया। स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा और उसके बाद एक से एक बढ़कर उपलब्धि जो हमें हासिल हुई है और आज हम कहते हैं कि भारतीय वस्त्र की पहचान वैश्विक पहचान है, तो ये भी हमने हासिल की है अपने बुनकर भाई बहनों के परिश्रम से ही। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर एम बीना, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी मैडम कि हमारा जो विभाग है और हमारा जो मंत्रालय है वो

0: किस तरह से हमारे जो बुनकर भाई बहन हैं उनके लिए कार्य करता है।
1: ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करने वाला विभाग है एंड उसका पूर्णतः लक्ष्य ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर, तो उसमें हमें हैंडलूम को भी बढ़ावा देना है और हैंडलूम के जो वीवर्स हैं उनकी भी मदद करना है, ये हमारा पूर्णतः लक्ष्य है
0: जी।
1: तो इसमें हमारे दो प्रधान कार्यक्रम है, एक तो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें हम देते हैं एंड टू एंड सपोर्ट वीवर्स को, स्किलिंग देते हैं उनको, मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं उनको, करखे नए करखे देते हैं उनको, वर्कशीट्स दिया जाता है, तो उस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दूसरा, हम तभी बुनाई शुरू करेंगे जब हमारे पास धागा होगा
0: जी।
1: तो सबसे एक बड़ा चैलेंज है बुनकर को कि धागा रॉ मटेरियल को आपूर्तिकरण के लिए, तो इसके लिए हमारा दूसरा स्कीम है रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम जिसके तहत हम देते हैं 15% प्राइस सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। तो ये तो हमारे बड़े कार्यक्रम है जो हर स्टेट में चलाया जाता है, हर क्लस्टर में चलाया जाता है, तो इसी से हमारे वीवर्स को बहुत मदद मिलती है
0: जी। जब हम बात करते हैं मैम वीवर्स की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर बुनकर अपने पूर्वजों से सीखकर ये कार्य कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते कई बार, तो उन्हें पता नहीं चलता कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सीधे आपसे सुने कि ऐसी क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ वो उठा सकते हैं।
1: तो हमारे जो भी स्कीम्स है वो अंततः वीवर का ही इसमें बेनिफिट होता है
0: जी।
1: जो वीवर ये नहीं जानते, काफी वीवर्स जानते हैं, लेकिन जो वीवर अभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे मुझे ये बोलना है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, देखो एक वीवर को नॉर्मली क्या चाहिए, उनको तो पहले धागा चाहिए
0: जी।
1: तो धागे के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के तहत दो तरह की सब्सिडी दिया जाता है। तो एक तो है आपका प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी उन धागों को दिया जाता है जो नेचुरल फाइबर्स है
0: जी।
1: जैसे कि कपास हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स है हम उनमें 15% प्राइस सब्सिडी देते हैं। जैसे कि अगर आप एक्रिलिक पे काम कर रहे हैं, आप सिंथेटिक पे काम कर रहे हैं, उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें हम बस ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं, माने आपको धागा मिल जाएगा मिल गेट प्राइस। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रधान कार्यक्रम
0: जी।
1: तो दूसरा, आपका जो हथकरघा है अगर वो पुराना हो गया या फिर अगर आप बहुत आउटडेटेड लूम पे काम कर रहे हैं तो आपको नया हथकरघा की जरूरत है, तो वो हम आपको दे सकते हैं हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा, बहुत सारे घरों में अब ये देखा जा रहा है कि घर नए बन रहे हैं तो घर में टीवी आ गया, सोफा आ गया, सब आ गया, अब हथकरघा के लिए जगह नहीं है
0: जी।
1: तो हम एक वर्कशेड का भी एक कार्यक्रम है जहां हम 1,20,000 तक वर्कशेड में मदद देते हैं जिसका 90% सरकार की ओर से जाता है और 10% वीवर को बैर करना पड़ता है। तीसरा है, हमारे बुनकर काम करते हैं तो उनको लाइट की जरूरत है
0: जी,
1: तो इसके लिए सोलार लाइटिंग का भी एक कार्यक्रम है जहां हम अप टू 15,000 सोलार लाइट के लिए भी देते हैं। तो ये अपने घरों में बैठकर ये तीन आपको मिल जाएंगे
0: जी।
1: लेकिन इसके अलावा हमें डिजाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है
0: जी,
1: तो इसके भी कार्यक्रम है। अब मार्केटिंग में हमारे बहुत सारे मेले लगते हैं, आपने सुना होगा गांधी बुनकर मेला जो जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है और नेशनल हैंडलूम एक्सपो अपने दिल्ली हाट में भी देखा होगा, हमारे बुनकर भाई लोग आते हैं। तो इन सब के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए एक तो अपना राज्य सरकार को भी हम पैसे देते हैं इसका आसूत्रण करने के लिए, तो इधर राज्य सरकार द्वारा वो अप्लाई करे या फिर हमारा एक पोर्टल होता है दिल्ली हाट वगैरह और जो भी नेशनल लेवल पे जो मेले होते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए दे हैव टू अप्लाई थ्रू द नेशनल पोर्टल। ये हो गया मार्केटिंग। नाउ अब ये है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसमें, देखो आजकल ना बहुत सारे फेक हैंडलूम भी चलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक बुनकर अपने प्रोडक्ट पे हैंडलूम मार्क नहीं लगाएगा तो हैंडलूम मार्क लगाने से जनता ये जान जाएगी कि ये ऑथेंटिक है
0: जी।
1: तो हैंडलूम मार्क के लिए भी प्रावधान है हमारे स्कीम में, हमारे लिए टेक्सटाइल कमिटी हैंडलूम ब्रांड का वो कार्यक्रम चलाती है। एंड कुछ ऐसे भी वीवर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड जो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं
0: जी,
1: तो उसके लिए भी प्रावधान है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कीम। तो वहाँ हमारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इनका चयन होता है और उनको बाहर भेजा जाता है। और एक महत्वपूर्ण

0: कार्यक्रम है हमारा अवार्ड्स
1: जी।
0: एक्चुअली ये जो 7 अगस्त है, सारे व्यूवर्स इसको मनाते हैं क्योंकि उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं उस
1: जी।
0: पे। हमारे 2 अवार्ड्स है, एक तो संत कबीर अवार्ड और दूसरा है नेशनल अवार्ड। तो ये जो अवार्ड का कार्यक्रम जो बहुत हुनरशाली व्यूवर्स है उनके सपोर्ट के लिए ये अवार्ड वाला कार्यक्रम है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर है वेलफेयर ऑफ द व्यूवर्स
1: जी।
0: अब वेलफेयर में भी हमारे 2-3 हिस्से हैं। हमारा एक अम्ब्रेला स्कीम है और हम ये कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड व्यूवर को मदद मिले। अब वेलफेयर में एक तो है हम इंश्योरेंस में हम उनका सपोर्ट करते हैं। तो 2 प्रधान हमारे इंश्योरेंस प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
1: जी।
0: तो इन दोनों में हम जो जो व्यूवर को प्रीमियम देना होता है उसका एक इन सुरक्षा बीमा योजना हम पूरा केंद्र सरकार देता है एंड इन जीवन ज्योति बीमा योजना इट इज अ शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट
1: जी।
0: तो ये एक और है। दूसरा, अगर आप अवार्डी वीवर है और अगर आपके पास वो इनकम कम है तो आपको प्रति मास 8,000 रुपीज का असिस्टेंस मिलता है ओवर 60 इयर्स
1: जी।
0: तीसरा है हमारा स्कॉलरशिप। अगर एक बुनकर के बेटे को टेक्सटाइल में पढ़ाई करनी है, चाहे वो डिग्री लेवल पर हो, डिप्लोमा हो या फिर हायर स्टडीज हो, तो वी सपोर्ट अप टू 2 लाख पर ईयर फॉर अ वीवर स्टूडेंट, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन पर वीवर। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर कार्यक्रम। और लास्ट में एक और कार्यक्रम है हमारा मुद्रा स्कीम। तो वीवर्स मुद्रा स्कीम में हम देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग मार्जिन मनी, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग इंटरेस्ट सबवेंशन, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग क्रेडिट गारंटी। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से स्कीम्स है। अगर बुनकर को ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हमारे हर राज्य में देयर इज अ बुनकर सेवा केंद्र वीवर सर्विस सेंटर, वहां पर उनको ज्यादा जानकारी मिल सकती
1: है जी। यानी एक बुनकर के जीवन में जितने पहलू हो सकते हैं सभी इन योजनाओं के माध्यम से आपने कवर करने की कोशिश की है और हर जगह कुछ ना कुछ मदद उपलब्ध करवाई जा रही है
0: जी।
1: ये रोचक जानकारी हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए बहुत ही जरूरी थी और बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं यहाँ आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी ताकि हम श्रोताओं को सुनवा सकें।
0: मेरी मातृभाषा मलयालम है
1: जी,
0: लेकिन हिंदी के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी लड़की थी तब से ये विविध भारती में जो भी गाने आते हैं तो एक्चुअली हिंदी जानने से पहले हिंदी के गाने। मैं सुनती हूँ
1: जी।
0: और आज के दिन आई थिंक मैं ये बोलूँ कि मोह मोह के धागे आज के सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिलेवेंट है।
1: सच में
0: बिल्कुल, आई विल रेकमेंड दैट।
1: और इससे हम ये भी समझ सकते हैं मैम कि जो विभाग आप संभाल रही हैं उससे आपका कितना मोह है ये धागे लोगों के कल्याण के धागे।

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले उन धागों की जो हथकरघा से हम तक पहुंचते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है हथकरघा दिवस का। बुनकर भाई बहन जो हैं उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं, इस बारे में हम जान रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज की मेहमान इस कार्यक्रम में है डॉक्टर एम बीना। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम में। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब किसी भी चीज को प्रचलित करने की बात करते हैं तो भारत में हम युवाओं को जरूर अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि व्यवहार में वो चीजें उन्हीं के माध्यम से प्रसार पाती हैं। ऐसे में क्या इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो कि शैक्षणिक स्तर पर हथकरघा से या बुनकरों से जोड़ रही हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को?
1: ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया। देखो, हम हथकरघा हमारी विरासत है। हैंडलूम में से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था एक जमाने में
0: जी,
1: लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ये लुप्त हो गया तो ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो ये नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेके चले
0: जी।
1: तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं कि उसको पॉपुलराइज करने के लिए, एक तो हमने अपने ओर से कुछ शिक्षा संस्थान हमने स्टार्ट किए हैं। दीज आर द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजीज है और स्टेट गवर्नमेंट और 5 IHDs चलाते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है वो हैंडलूम

0: और टेक्सटाइल पे बहुत अच्छे से डिप्लोमा भी चलता है, डिग्री भी का भी कोर्स है, तो ये एक ओर से हम ये कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो बुनकर सेवा केंद्र है, तो उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि आसपास जो भी जनरल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ के बच्चों को जाके वो क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि वो
1: जी
0: देख सके। को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कभी हथकरघा को देखा ही नहीं है, कैसे चलता है वो
1: जी
0: उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेता है कि आज का जो ज़माना है वो सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी के ओर चल रहा है।
1: जी
0: एंड आज के जेंसी ये एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस हैं, तो ये चाहते हैं कि देखो हमारे ज़माने में किसी का पहना हुआ हम पहने की वो सोच भी नहीं सकते थे,
1: जी
0: लेकिन आज ये ऐसा ज़माना आ गया कि जेंसीज थिंकिंग ऑफ रीयूजिंग,
1: जी
0: कंजर्वेशन, तो बहुत उनकी सोच में क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं। द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू द यूथ इज हैंडलूम में जो बनता है इट इज़ कार्बन न्यूट्रल, बिकॉज
1: जी
0: वीविंग में तो हम पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इट इज़ वेरी सस्टेनेबल, इट इंटीग्रेट सर्कुलैरिटी, तो ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपने यूथ को। खासकर हमारा एक प्रोग्राम भी ऐसा ही है, वीव द फ्यूचर।
1: जी
0: तो वीव द फ्यूचर में हम जो अपसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग में जो ब्रांड्स हैं जो हैंडलूम में काम करते हैं हम उनको मिला के दिल्ली हाट में, कभी क्राफ्ट म्यूजियम में, ताकि ये लगातार ये कॉन्वर्सेशन चलता रहे कि हैंडलूम इज इंटेग्रल टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो गया द सस्टेनेबिलिटी कॉम्पोनेंट ऑफ अट्रैक्टिंग यूथ। बट दूसरा, जब तक हम साड़ी पर ही रहेंगे तो
1: जी
0: यूथ थोड़ा सा इसमें आने से कतराएंगे। तो इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो हमारे मेरे बुनकर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप साड़ियाँ बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन
1: जी
0: ज़माना आ गया है कि आप अपना फैब्रिक को नए तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें जो आज के जेंसी पसंद करते हैं,
1: जी
0: तो उस तरह का भी आप काम करें। हमारे विभाग से डिज़ाइनर्स मौजूद हैं क्लस्टर लेवल पे, तो उनकी मदद लेके आप नया काम करने की भी कोशिश करें।
1: जी
0: और दूसरा, मैं बुनकर भाइयों के बच्चों से, जो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीविंग नहीं भी आती हो लेकिन अपने पिताजी से, अपने माताजी से उनका जो हुनर है वो अंडरस्टैंड करें, और उसको एटलीस्ट इंस्टा पेज तो वो बना सकते हैं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: एटलीस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो कर सकते हैं। तो ये मेरी विनती है देश की युवा पीढ़ी से।
1: जी। और कुछ समय पहले हमें एक छात्र से बात करने का अवसर मिला था, तो उन्होंने यही बताया कि NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग, उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जब फैशन शोज होते हैं, हम फैशनेबल कपड़े बना रहे होते हैं, तो उनके पैटर्न्स में भी हम इस तरह की वीविंग्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो बुनकर हैं उनके बच्चे भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते
0: एक्चुअली
1: हैं।
0: आपने अच्छा, देखो दरअसल निफ्ट नाम की संस्था है,
1: जी
0: तो निफ्ट के साथ हमने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हम चलाते हैं, यह है क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव। तो निफ्ट का हर एक बच्चा किसी न किसी आइदर हैंडलूम क्लस्टर या हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर में जाते हैं, वो समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है, एंड कुछ इनपुट्स वीवर को भी मिलता है, कुछ सीख बच्चे को भी मिलता है।
1: जी
0: एंड इस एसोसिएशन से हमने ये देखा कि एक बच्ची थी जो गुजरात में निफ्ट में पढ़ी थी, तो उसके बाद आफ्टर स्टडिंग शी हैज
1: जी
0: स्टार्टेड एन ई कॉमर्स पोर्टल फॉर ऑल द वीवर्स,
1: जी
0: एंड इतना अच्छा उसका टर्नओवर आज आ गया है, इतना सक्सेसफुल हो गया है। दिस इज सच अ लवली एग्जाम्पल कि बच्चे, जब युवा, द यंग ब्लड एंड इनोवेशन कम्स इनटू द पिक्चर, इट रियली ट्रांसफॉर्म्स द
1: जी
0: एंटायर सेक्टर।
1: जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथी जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वो ये समझेंगे कि उनकी ऊर्जा की ज़रूरत हमारे बुनकर भाई बहनों को भी है, और उनके नए विचारों की ज़रूरत भी है। तो मैम, इसी मोड पर आपकी पसंद का एक और गाना।
0: हमारे केरला से एक बहुत मशहूर सिंगर है
1: जी
0: येशुदास, केरला में तो वो मशहूर है ही, लेकिन उनके जो हिंदी के गाने हैं वो भी बहुत पॉपुलर है।
1: जी
0: तो उनका एक गाना है मधुबन खुशबू देता है, बहुत
1: वाह
0: पसंदीदार गाना
1: जी,
0: है।
1: बहुत ही अच्छा गाना आपने चुना है। यही गाना हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक

0: चांद तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मैम इस गाने से पहले कि किस तरह से हम ट्रेंड में ला सकते हैं अपने हैंडलूम को। आजकल जब युवा आपस में मिलते हैं या पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारे घर अतिथि आते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ भेंट हम देते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगी हम हथकरघा से बुने हुए उत्पादों को कैसे शामिल कर सकते हैं?
1: इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।
0: जी,
1: वे जब भी बाहर जाते हैं या फिर बाहर से कोई लीडर्स इंडिया में आते हैं तो हमेशा उनका गिफ्ट जो है आइदर हैंडलूम का होता है या फिर हैंडीक्राफ्ट का होता है। तो हम तो बोलते हैं कि हमारा सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रधानमंत्री जी ही है।
0: जी,
1: तो वो एक्चुअली अच्छा उदाहरण है। जब भी हमें तोहफा देना होता है
0: जी,
1: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो दिवाली पर गिफ्टिंग करते हैं, कॉरपोरेट गिफ्टिंग करते हैं, तो अपना जो ट्रेडिशन है उसको भेंट करें। तो कुछ लोग करते भी हैं एंड कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने CSR के द्वारा कंपनीज खड़े किए हैं या फिर संस्थाएं खड़े किए हैं फॉर इंडियन हैंडलूम्स, चाहे वो आदियम हो चाहे तनेरा हो, तो ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं। बट गिफ्टिंग के लिए दिवाली अब आने को है तो अभी से आप अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कीजिए, अपना हम जो भी करें अपने आइडेंटिटी को याद करें। जब हम आइडेंटिटी को याद करेंगे, अपने रूट्स को याद करेंगे, तो हथकरघा तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है।
0: जी, ऐसे में मैम हमारे संस्थान का भी मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगी। हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो भी अतिथि होते हैं उन्हें हम अंगवस्त्र जो है वो हैंडलूम से दें और सिर्फ पौधा भेंट करें, बाकी जो प्रतीक चिन्ह है उनके अतिरिक्त।
1: बहुत अच्छा,
0: तो ये भी हम आपस में ध्यान रख सकते हैं। और जेन ज़ी जो है, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत तेजी से आप चीजों का प्रसार करते हैं, तो ऐसे में जो अपनी पहचान है, हर राज्य के अपने अलग ऐसे धागे हैं जिन पर हमें गर्व है, हर राज्य का अलग पैटर्न है, तो हम उसके बारे में जानें और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मैम हम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं ऐसे में इस बात पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचे और हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ऐसे में क्या इस तरह की नीतियां हैं कि हमारा हैंडलूम विदेशी बाजारों में भी अपनी पहचान भी बनाए रखे और ज्यादा विस्तृत पहुंचे?
1: हैंडलूम का जो सस्टेनेबिलिटी एंगल है वो मोर देन इंडिया, एक्चुअली फॉरेनर्स उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
0: जी,
1: लेकिन पहले हमारा ये इश्यू था कि हमारे पास ना कोई रिपोर्ट था ना कोई स्टडी था जो एक्चुअली ये बता सके कि हैंडलूम पे जब कपड़े बुनते हैं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है।
0: जी,
1: सो लास्ट ईयर हमने इसी अराउंड दिस टाइम IIT दिल्ली द्वारा हमने एक स्टडी संचालित किया था, तो उसका ये रिजल्ट आ गया है कि अगर हम हैंडलूम पे कपड़ा बुने कंपेयर टू मिल मेड, इट इज अराउंड लेस देन 1/4 ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। तो ये जो है, एंड इसका सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंटरनेशनल मार्केट्स अब पूरी तरह दे आर लुकिंग एट सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, खासकर यूरोप में जो देश है, UK जो है वो बहुत इस पर इंसिस्ट करने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो कॉन्शियस। हाल ही में भारत टेक्स हुआ था जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था जो एक्सपोर्ट पे फोकस करता था, तो वहाँ पर भी ये बार बार हर मीटिंग में ये दोहराया गया कि सर्कुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द चैलेंज बिफोर अस इज टू इंटेग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू द हैंडलूम। तो इनहेरेंटली सस्टेनेबल है लेकिन उसको सर्टिफिकेशंस, क्वालिटी चेकिंग एंड वो एक्सपोर्टेबल लेवल तक उसको लेके आना है। तो हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसमें बहुत काम कर रहे हैं एंड हम ये भी अभी एक नेक्स्ट ईयर फ्रांस में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है प्रीमियर विजन, तो इंडिया हैज द हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ अ पार्टनर फॉर प्रीमियर विजन एंड वी विल बी शोकेसिंग इट बिफोर एन इंटरनेशनल ऑडियंस कि हमारा हैंडलूम क्या है, विरासत क्या है, प्लस उसका सस्टेनेबिलिटी एंगल क्या है।
0: एक बड़ी समस्या आजकल व्यवहारिक तौर पर ये आती है मैम कि घर में आम तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास भी, बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और ऐसे में फैशन भी तेजी से बदलता है तो हमारा वार्डरोब चेंज होता रहता है। एक चुनौती होती है कि जो पुराने कपड़े हैं जो पहनने की स्थिति में है उनका हम क्या करें? क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अगर हथकरघा के उत्पाद हैं तो वो कहीं उचित माध्यम से पहुंचाए जा सके और उनका रीयूज हो सके बजाय इसके कि हम उन्हें फेंके या किसी को दें?
1: एक्चुअली ये रीयूज का कल्चर, रिसाइकलिंग का जो कल्चर है, तो हाल ही में हमने एक इवेंट किया था वीव द फ्यूचर। तो वीव द फ्यूचर में हमने क्या किया, वी केप्ट अ बॉक्स ताकि आपके जो यूज्ड कपड़े हैं आप वहां

0: दीजिए. एंड वी कलेक्टेड यूज्ड कपड़े एंड वी स्टार्टेड, इट इज गिवन टू आवर रिसाइकलिंग सेंटर्स. तो अभी ऐसे प्रयास चल रहे हैं हमारे जो सिटीज में, कुछ ऐसे चल रहे हैं. एंड हमने एक ऑक्शन भी किया था जो हमारा कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने कुछ कपड़े डोनेट किए थे, तो उसका हमने ऑनलाइन ऑक्शन भी किया था जो भी बहुत सक्सेसफुल था. तो ऐसे प्रयास हो रहे हैं. एंड खासकर हैंडलूम्स का इससे जो मिलता है कि ऐसे अगर रिसाइकल धागे होते हैं वो नॉर्मली जो बड़े मशीन में वो चलेगा नहीं, द बिग मशीन में वो ज्यादा ब्रेकेज और श्रिंकेज होता है, तो उसके लिए हथकरघा ही मोर सूटेबल है. तो इसलिए हैंडलूम एंड ये रिसाइकलिंग सब साथ में लेके चलते हैं. एंड वीव द फ्यूचर के अभी तक हमने 4 एडिशंस किए हैं. अब ये 5th एडिशन विल बी लॉन्च्ड अलोंग विद द नेशनल हैंडलूम डे.
1: जी, हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, जैसे गांधी स्मृति और राजघाट पर जो संस्थान है वो चरखे का उपयोग अभी भी करते हैं खादी को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे काता जाता है, कताई क्या होती है, कतान किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. क्या इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर वॉलंटियरली जाकर युवा जो हैं वो सीख सकें कि हथकरघा कैसे चलाना है, भले ही वो उनका पेशा नहीं है?
0: एक्चुअली आपका सजेशन बहुत अच्छा है. एंड अभी सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम में हमारा एक एग्जीबिशन है द वीव्स ऑफ इंडिया, तो वहां पर वी हैव सेट दी स्मॉल लूम्स, हम उसको टॉय लूम्स या एक्सपीरियंशियल लूम्स हम बोलते हैं, बहुत छोटे से लूम्स है. तो हम वहाँ बहुत इंटरेस्ट भी है, छोटे बच्चे महिलाएं सब जाके ट्राई आउट कर रहे हैं. देखो वो इतना आसान भी नहीं है, द एक्चुअल जो हथकरघा है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. बट ये सिंपल थिंग ऑफ यू नो जॉइनिंग अ वार्प एंड वेफ्ट जिससे कपड़ा निकलता है, वो एक्चुअली हम भी कर सकते हैं. तो उसके लिए ऐसे एक्सपीरियंशियल चीजें हम अपने जो एग्जीबिशंस या एक्सपोज होते हैं हम उसमें वो शामिल कर रहे हैं.
1: जी, उसमें शामिल किया जा रहा है. आमतौर पर ये होता है हैंडलूम पहनना सभी चाहते हैं और हैंडलूम की जो साड़ियाँ होती हैं बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हाथ से तैयार की गई हैं और बहुत लंबा समय लगा है बुनकर को उसे तैयार करने में, तो इसलिए वो अक्सर महंगी भी होती हैं. अभी तक हमने जो बात की वो इस तरह की योजनाओं की है जिनका लाभ बुनकर उठा सकते हैं. क्या जो खरीदार हैं उनको भी हैंडलूम खरीदने पर कुछ विशेष प्रोत्साहन मिल सकता है?
0: एक्चुअली मिनिस्ट्री का ये थॉट है कि कस्टमर को, हालांकि कुछ राज्य सरकार सब्सिडी दे रहे हैं
1: जी,
0: बट हमारा ये यू नो व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग द कंज्यूमर्स इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट. देखो जब हम एक बार देखें कि ये कैसे बनता है
1: जी,
0: एक बार एक बुनकर के घर में जाएंगे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इस यू नो इंक्रीज प्राइस देने में कोई हिचक नहीं होगी. तो द स्टोरी ऑफ द वीवर, जब आप ये समझ सके एक प्रोडक्ट पे अगर उसमें QR कोड स्कैन करने पे आपको मालूम पड़ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन से गांव से आ रहा है, वहां से एक बुनकर की कारीगरी है. देखो हम सोचते हैं कि वीविंग इज इजी, इट इज नॉट इजी
1: जी,
0: इट इज एडवांस्ड मैथमेटिक्स. मैंने ये जो वॉर्प एंड वेफ्ट का जो हिस्सा है एंड उसमें देखो वॉर्प एंड वेफ्ट तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें डिजाइन बनाने के लिए द काइंड ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स दैट हैज टू बी डन इज रियली कॉम्प्लेक्स. तो माय पॉइंट हियर वुड बी कि हमें खरीदना चाहिए एंड जो एक्चुअली वीवर को सीट एज अ प्रीमियम आर्टिकल सो दैट वी रीच द प्रीमियम मार्केट एंड ताकि वीवर को अच्छा वेजेस भी मिले. एट द एंड ऑफ द डे वीवर को अच्छा वेजेस मिलना चाहिए. नाउ एज फार एज अ कस्टमर इज कंसर्न, अगर आप वीवर से डायरेक्टली खरीदेंगे तो यू विल गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस. अगर बीच में मिडल मैन आ जाए, बीच में एक मार्केटिंग एजेंसी आ जाए तो प्राइसेस ज्यादा सा इंक्रीज होगा. तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि हम जो मेलाएं लगाते हैं जब भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, जब आप वीवर से डायरेक्टली खरीद सके तो आप उसका लाभ उठाए. दूसरा, मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाया है indiahandmade.com. इंडिया हैंडमेड एक ऐसा पोर्टल है जहां वीवर खुद अपना डालता है, वीवर पुट्स हिज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो वहां पर भी आपको बहुत रीजनेबल रेट्स मिल जाएंगे.
1: जी,
0: तो इन सुविधाओं का आप इस्तेमाल करें.
1: जी, एक अनुभव मेरा इस बारे में बहुत अच्छा रहा कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं कि वो जो स्पॉट रखते हैं घुमाने के लिए, साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं, उसमें उस जगह के बुनकरों को भी शामिल किया जाए. तो हमने एक इस तरह का दौरा किया और उसमें हमने ये जाना, जैसे अभी आपने कहा कि कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, उसमें बुनकर ने हमें बताया कि जो हमारा राज्य का पेड़ है हम उसकी पत्तियां इसमें लगाते हैं, जो हमारा राज्य का पक्षी है हम उसकी छवि इसमें देते हैं, और इस तरह से हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं अपना काम करते करते. तो ट्रैवल एजेंसीज भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं.

0: क्या सोचती हैं इस बारे में?
1: बहुत अच्छा सोच है, बिकॉज देखो टूरिज्म एंड हैंडलूम
0: जी
1: का बहुत अच्छा मेल हो सकता है। तो हमारा एक कार्यक्रम भी है, यह है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज
0: जी।
1: तो क्राफ्ट टूरिज्म विलेज में हम ये करते हैं कि जहाँ टूरिस्ट फुटफॉल है, अगर अगल बगल में कोई हैंडलूम का क्लस्टर है, हम उसको लिंक करते हैं, एंड वहाँ ताकि टूरिस्ट वहाँ जा सके, वीवर के घर जा सके, वीविंग का कोई एक्सपीरियंस ले सके, एंड एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हो, उनका मार्केटिंग भी हो
0: जी।
1: तो अभी देश में हमारे 6 क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस ऑलरेडी चालू हैं और 3 में अभी काम चल रहा है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि टूरिज्म का इंटेग्रल पार्ट है ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। आपने सही पहचाना कि देखो जो धागा यूज किया जाता है, जो मोटिफ करते हैं, जो रंगाई करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज लिंक टू द कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम उसको छोड़ ना दे, हम उसको मेंटेन करें, उसको चेरिश करें, उसको आगे लेके जाए
0: जी। तो इसी मोड पर मैम आपकी पसंद का एक और गाना,
1: अभी एक रिसेंटली एक मूवी आया था कारवा
0: जी,
1: तो जहाँ हमारा एक यंग स्टार है दुलकर, तो जो कि ममूटी जी बहुत रिनाउंड मलयालम एक्टर है, उनका बेटा है दुलकर, एंड देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग इन दैट, एक छोटा सा फसाना
0: जी
1: वो प्ले करिए
0: जी। बिल्कुल यही गीत सुनवाते हैं।

0: स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले हमारे देसी धागों की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में। और कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एम बीना, आप डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम, अभी हमने बात की कि किस तरह से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं हैंडलूम से और किस तरह से जो बुनकर हैं वो भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें आसानी से पा रहे हैं, तो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए?
1: एक्चुअली हैंडलूम जो है वो ट्रेडिशनल है, बट ये नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली हैंडलूम को स्ट्रेंथन करने के लिए वी शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो उसमें एक दो प्रयास हमारे मिनिस्ट्री की ओर से चल रहा है। तो एक तो है कि हैंडलूम टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए एक संस्था का अभी हाल ही में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है
0: जी।
1: वो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो हम आईआईटी दिल्ली के साथ हम कर रहे हैं, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी में, बेटर लूम्स में, बेटर एर्गोनॉमिक्स में, नए डिजाइन में, नए डाइस में, इन सब में रिसर्च करें और उस रिसर्च का जो नतीजा है हमारे व्यूअर्स को दे। दूसरा, हम फ्रॉम द यूथ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, हम एक लूम हैकाथॉन हमने अनाउंस किया था
0: जी।
1: काफी उसमें रिस्पॉन्स भी आया है, एंड दैट इज ऑल्सो वन वे जहां हम अच्छे आइडिया समेट सके ताकि हम हैंडलूम सेक्टर में यूज करें
0: जी।
1: तीसरा है, हमने अभी एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है। देखो, ये ट्रेसेबिलिटी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंडलूम सेक्टर, कि एक्चुअली वो हैंडलूम पे बना है, कहाँ बना है, कैसे बना है। तो इसके लिए एक आईओटी डिवाइस है जो लूम पे लगाया जाता है, एंड ये जो डिवाइस है वो एक तो वो जीआई टैग्ड है, तो ये कहाँ पे बुन रहा है वो ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाता है। दूसरा, जो लूम का जो मूवमेंट है वो उसको कैप्चर करता है। देखो, अगर पावर लूम में है तो मूवमेंट इज एंटायरली यूनिफॉर्म, अगर हाथ से बन रहा है तो एक मूवमेंट में ज्यादा फोर्स होगा, एक में कम होगा। तो इन अ वे इट इज ऑथेंटिकेशन, इन अ वे इट इज जियो टैगिंग, एंड कितना धागा बन रहा है एक दिन, वो पूरा डेटा उसमें कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी हम एक बड़े स्तर पर पायलट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, एंड अब नए फेज में हम 10,000 ऐसे सच डिवाइसेस हम लेके आ रहे हैं
0: जी। हथकरघा घाट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जी।
1: हैंडलूम हार्ट इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां हम एक अच्छा सा एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे इन दिल्ली वी आर वर्किंग फॉर दैट, ताकि एक अच्छा सा रिटेल स्पेस मिले जो हमारे हैंडलूम के बुनकर को, प्लस जो स्टार्टअप्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो निफ्ट के यंग डिजाइनर्स पास आउट हो रहे हैं, उन सबको मिला के हम एक हैंडलूम हाट का भी आयोजन कर रहे हैं
0: जी। क्या बुनकरों से संवाद का कोई सीधा तरीका है जहाँ वो अपनी समस्याएं भी रख सके? कोई ऐसा मंच उपलब्ध करवाया गया है?
1: देयर इज समथिंग कॉल्ड द चौपाल
0: जी।
1: तो हमारे सारे वीवस सर्विस सेंटर्स फील्ड पे जाते हैं एंड क्लस्टर लेवल पे चौपाल कराते हैं। तो एक और तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, एंड जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन हर बुनकर को ये जानकारी नहीं है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो गांव में जाते हैं, चौपाल कराते हैं, स्कीम के बारे में बताते हैं, एंड कहीं कहीं तो वहीं से एप्लीकेशन भी ले लेते हैं। तो ये है एक एवेन्यू। दूसरा, हम जो भी हमारे बड़े ट्रेनिंग्स होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है समर्थ ट्रेनिंग। तो समर्थ ट्रेनिंग के तहत वीवर को एक अच्छा एक है कि उसको वेज कॉम्पेंसेशन मिलता है। कभी कभी ये लोग ट्रेनिंग पे नहीं आते क्योंकि एक दिन का उनका वेजेस चला जाता है। तो अंडर द स्कीम वी प्रोवाइड फॉर वेज कॉम्पेंसेशन। तो समर्थ हमारा एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम है हैंडलूम सेक्टर में। तो वहां भी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद दीस मैटर्स, एंड हैंडलूम दिवस जैसे जो बड़े सेलिब्रेशन होते हैं तो वो तो हर क्लस्टर में, हर डब्ल्यूसी लेवल पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, ये सब दीज आर प्लेसेस वेयर वी कम टुगेदर। अभी हाल ही में बजट में एक नया स्कीम अनाउंस हुआ है, नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। तो उसको बनाने के लिए काफी चर्चाएं हुई एट द फील्ड लेवल, एट द स्टेट लेवल, जो इसमें विशेषज्ञ हैं उनसे भी काफी बातचीत हुई है। तो ये हमेशा एक ऐसे वार्तालाप का हम स्वागत करते हैं ताकि वीवर्स भी अपना मन रख सके हमारे पास
0: जी। इस विषय में हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गाना।

0: इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे हथकरघा से जुड़े हुई जो आर्थिक पक्ष है उसकी भी, साथ ही सरकार ने जो योजनाएं उपलब्ध करवाई हैं उनकी और सामाजिक पक्ष भी। अब बात करते हैं हथकरघा से जुड़े हुए स्वास्थ्य पक्ष की। हम कहते हैं कि हैंडलूम जो है, ये जो धागे हैं, ये स्किन फ्रेंडली है और स्किन डिजीज से हम बच सकते हैं अगर हम सही तरीके के कपड़े पहने, वो फैब्रिक जो है वो ठीक हो। इस बारे में मैम क्या कहेंगी?
1: हैंडलूम जो बनता है वो ज्यादातर नेचुरल फाइबर्स पे बनता है, एंड क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स पे बनता है एंड मोस्ट ऑफ देम यूज नेचुरल डाइस ऑल्सो, आजकल बहुत नेचुरल डाइस का भी यूज हो रहा है
0: जी।
1: तो हमारा एक स्टार्टअप है जो साउथ में है, तो उन्होंने एक योगा मैट बनाया है हैंडलूम पे। तो नॉर्मली हम योगा मैट जो जो चाइनीज इम्पोर्टेड है वो यूज करते हैं, मैंने योगा करते हैं एंड उसी के फ्यूम्स हम इनहेल करते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो हैंडलूम योगा मैट बनाते हैं ताकि जब हम योगा करें और पसीना निकले, जो हम फ्यूम्स इनहेल करें वो बहुत हर्ब्स जैसे है उसमें मिलाया जाता है। अगर हैंडलूम का भी बेडशीट यूज करें, हैंडलूम के कपड़े यूज करें, वो डेफिनेटली वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल कलरिंग भी आ गया है ताकि वो और बेटर बन जाए
0: जी। हम बात कर रहे थे कि युवा किस तरह से और ज्यादा यूज कर सकते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स का, ऐसे में सोवनियर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर उस इंडस्ट्री से हमें लोग इस समय सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है?
1: तो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे सोवनियर बन सकते हैं एंड उसको हमें ज्यादा यूज करना है। एंड यूथ के लिए एक्चुअली मैं अपने बुनकर भाइयों को भी बोलती हूँ कि अब यूथ के लिए जो कपड़े बनने हैं, तो हाल ही में हमने एक डिजाइनर कॉन्क्लेव के लिए एक कॉन्टेस्ट जैसे रखा, देश में जो 72 क्लस्टर्स से जहाँ हम क्लस्टर डिजाइनर्स थे, हमने एप्लीकेशन मंगवाए एंड इतने अच्छे नए तरीके के ड्रेसेस आए हैं। मैंने जो हैंडलूम में पहले तो हम ओनली साड़ीज देखते थे, लेकिन अब इतना इनोवेशन अब चल रहा है ताकि युवा भी इसमें जरूर आकर्षित होंगे
0: जी। और हम तो अपने सभी श्रोताओं से ये कहेंगे ही कि जैसा कि मैम ने भी कहा कि जब भी कभी कोई उपहार दे, कोई भेंट दे किसी को, उसमें हैंडलूम आइटम्स जरूर रखें। जब कभी दोस्ती यारी निभानी हो तब भी, आप कोई अच्छा सा गिफ्ट लें तो उसमें भी ये याद रखें कि हमारी जेब से जो पैसा निकलता है वो देश में घूमे और सही हाथों में पहुंचे, तो हमारा छोटा सा उपहार भी बुनकर जो भाई बहन हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। चलते चलते मैम क्या संदेश आपका हमारे सभी श्रोताओं के लिए?
1: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 7 अगस्त को तो आपको पहनना ही है हैंडलूम, तो आपको हर भारतीय को 7 अगस्त को हैंडलूम पहनना है
0: जी।
1: और उससे ऊपर हम हैंडलूम को जीवन का हिस्सा बनाए, ये बुनकर की जो कला है उनकी जो जो सर्गात्मकता है उसको आप प्रोत्साहन दे, उनका हौसला बढ़ाए एंड सबसे ऊपर हमारी विरासत को हम अपनाए, उस पर फकर करें, उसको पूरी तरह से अपनाए
0: जी।
1: तो हैंडलूम को पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए और जीवन में उसका हिस्सा बना दीजिए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। और हम कहेंगे कि ये वो संस्कृति और ये वो विरासत है जो पहनी जा सकती है, जिसे हम हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने देश के कोने कोने में भी और साथ ही भारत से बाहर भी। आप सुन रहे थे पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हमारी विशेषज्ञ थी, हमारी अतिथि थी डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर आप और डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम ने हमसे बात की और बहुत सारे नए विचार भी हमें पता चले और साथ ही ऐसी योजनाओं के बारे में भी हमने जाना, हमारे श्रोताओं ने जाना जो खास तौर से बुनकर जो हैं उनके लिए है, उनके कल्याण के लिए है। मैम आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हैंडलूम के लिए टाइम दिया, अपने देश के बुनकरों को आपने याद किया, थैंक यू।
0: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
2: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं।
4: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
6: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
7: कल सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक रोड, टॉक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।

कार्यक्रम विवरण में अब आपको जानकारी दे दें आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सिंधी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:10 से। बच्चे अपना बालवाणी कार्यक्रम सुनेंगे दिन में 1:30 से। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस और विश्व शेर दिवस पर। हुनरबाज में बच्चे मिलेंगे देवांशु शर्मा से। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत कलाकार होंगे अहमद खां। फिल्मी गाने हम आपको दिन में 12:40 पर, दिन में 1:05 पर, दोपहर 3 से और शाम को 4 से सुनवाएंगे। दिन में 3:30 पर आप सुनेंगे नाटक मनु मायरा। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम को 5 से, शाम को 5:30 पर और शाम को ही 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

ग्रामीण भाई अपना ग्राम भारती कार्यक्रम शाम को 7 बजे से सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे महेश दत्त से की गई बातचीत। विषय रहेगा मुर्गी पालन आमदनी का साधन। इस बातचीत के अलावा लोकगीत सुनवाए जाएंगे, साथ में बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी ग्रामीण भाइयों को करवाई जाएगी। खेती बाड़ी किसान भाई अपना ये कार्यक्रम शाम को 7:30 से सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाई सौरभ शेरावत से की गई बातचीत सुनेंगे। विषय रहेगा राजस्थान में व्यावसायिक फूलों की खेती, अवसर, चुनौती व संभावनाएं। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा, जैसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही हम नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स रिले करेंगे। रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रिले करेंगे।

हम आपको पुनः याद दिला दें, रात्रि 10 बजे से हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम विवरण में ये थी जानकारी आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। दिन के 12:10 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए सिंधी कार्यक्रम।

0: सभिनी सामयन खे हिन मेहोगी मौसम जो नमस्कार ऐं मां हेमा मलानी तव्हां सभिनी सामयन जी दिली आजियां थी कयां। साथियों, अॼु आहे महीने जो ॿियो आर्तवार ऐं अॼु जो प्रोग्राम आहे ज़ालुनि जे लाइ मुंहिंजो घर मुंहिंजो संसार। प्रोग्राम जे तहत असां ॿुधंदासीं ॻाल्हि ॿोल पूजा चांदवानीअ सां। उनवान आहे त्योहारनि जो महीनो, थधे जी तयारी, कहिड़ा बदिलाउ। चर्चा कंदासीं आलमी आदिवासी ॾिहाड़े ते ऐं मज़ो माणींदासीं गीत संगीत जो। त अचो साथियों, सभिनी खां पहिरीं ॿुधूं था ॻाल्हि ॿोल। अॼु जेको असांजो ॻाल्हि ॿोल जो विषय आहे उहो बि त्योहारनि सां रिलेटेड आहे। त अॼु जो जेको असांजो उनवान आहे त्योहारनि जो महीनो, थधे जी तयारी, कहिड़ा बदिलाउ। पूजा प्रोग्राम में तव्हांजो स्वागत आहे ऐं ॾाढनि ॾींहंनि खां पोइ असां मिलिया आहियूं ऐं ॾाढो सुठो विषय अॼु जी ॻाल्हि ॿोल जो आहे हेमा
1: जी। त
0: सभिनी खां पहिरीं मां पूजा खां इहो ई पुछणु चाहींदसि की घणेई त्योहार असां मल्हाया आहिनि हेल ताईं, कुंवारे हूंदे बि, उन खां पोइ शादी खां पोइ बि, त कुझु बदिलाउ त उते ई नज़र अची वेंदा आहिनि की असां माइटनि में कुझु अलॻि नमूने सां त्योहार मल्हाईंदा आहियूं ऐं कुझु कुझु बदिलाउ सावरनि में अचण खां पोइ महसूसु थींदा आहिनि। पूजा, सभिनी खां पहिरीं इहो ॿुधाईंदीअ की जेका वॾी सतह पई अचे, तुंहिंजी शादी थी त पहिरीं कुझु अलॻि हुआ माइटनि में नियम ऐं शादीअ खां पोइ कुझु अलॻि हुआ छा?
2: भई पहिरीं त तव्हां ॿिन्हिनि जी तमामु घणी घणी महिरबानी की अॼु तव्हां मूंखे पंहिंजे हिन प्रोग्राम में शामिलु कयो आहे। मूंखे एतिरी त ख़ुशी थी आहे, हिकु त त्योहारनि जी ख़ुशी, त्योहारनि जो उत्साह, उमंग जेको भरियलु आहे, जेके त्योहार पाण मल्हाए आयासीं हींअर, ऐं वरी जेके त्योहार हींअर अचणा आहिनि उन्हनि जी ख़ुशी खणी आयसि, ऐं वरी तव्हां ॿिन्हिनि जो मिलन थी वियो। अॼु मूंखे सम्झ में ई नथो अचे की मां पंहिंजी ॻाल्हि किथां शुरू कयां।
0: मतिलबु अॼु मेल मिलाप थी वियो आहे त्योहारनि जो हिते।
2: बिल्कुलु, त ॾिसो जेकी ॻाल्हि तव्हां कई न, सभ खां पहिरीं त मां इहो ई चवंदसि की त्योहार ई त आहिनि जेके पंहिंजे जीवन में मेल मिलाप खे वधाइनि था। पंहिंजी जेकी बि मिट माइट आहिनि, दोस्त यार आहिनि, उन्हनि सां हिकु सुठी गॾिजाणी थी वेंदी आहे, ऐं उन जे अलावा त्योहारनि में जेके लज़ीज़ जाइकेदार पकवान ठहंदा आहिनि उन्हनि जो त मज़ो ई अलॻि थींदो आहे। ऐं हाणे ॻाल्हि थी कयां जेकी राजकुमारी तव्हां पुछी की तुंहिंजे पेकनि में ऐं सावरनि में छा फ़र्क़ु आहे। बिल्कुलु, मुंहिंजे पेकनि में बि ॿई थींदा हुआ, तरबो बि हो ऐं पचाइबो बि हो, का झल न हुई। पर हा, मुंहिंजे सावरनि में रुगो पचाईंदा आहिनि। ऐं मूं मम्मीअ खे चयो की मम्मी मूंखे त भई छो त तव्हां रुगो पचायो था, मूंखे त आदत आहे एतिरे वक़्त खां, छो त मूं तरियल बि खाधो आहे। त मुंहिंजी ससु चई तूं ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे पूजा, का ॻाल्हि कान्हे, इन में को वहम बि कान्हे, इहे त हिकु तरह जा रीति रिवाज़ जेके हलनि पिया, पर उन में पाण मटे बि सघूं था। ऐं हाणे तूं आई आहीं शादी करे त हिकु नई शुरूआति था कयूं।
0: अरे वाह, यानी तुंहिंजी शादीअ खे उन्हनि नई शुरूआति मञी करे ऐं तरण जा पकवान जेके आहिनि उहे बि शुरू कया।
2: उहे बि शुरू कया। त मुंहिंजे घर में हाणे ॿई थींदा आहिनि, असां तरंदा बि आहियूं ऐं पचाईंदा बि आहियूं।
0: त पूजा, इहो ॿुधाए न कि तव्हांजे घर में छा छा ठाहींदा आहिनि ऐं हिकु ॾींहुं पहिरीं खां ई छा तयारी कंदा
2: आहिनि? भई हिकु ॾींहुं न, मां ॿुधायां त मुंहिंजे घर में त जाम सभिनीनि खे वणंदो आहे इहो थधे जो, एतिरो इंतज़ारु रहंदो आहे, चाहे वॾा हुजनि चाहे ॿार हुजनि। ऐं तव्हां चवंदा अॼुकल्ह नई टई आहे उहे त पसंदि नथा कनि, पर न, असांजे घर जा जेके ॿार आहिनि न उहे इन करे पसंदि था कनि छो त उन्हनि खे पंहिंजे दोस्तनि यारनि खे खाराइणो हूंदो आहे।
0: अरे वाह, थो ऐं ॿारनि जा जेके साहेड़ियूं ऐं दोस्त अचनि था, अगरि बचपन खां ई उन्हनि खे बि आदत लॻल आहे त ॿियो न त उन्हनि जे निस्बत ठहंदो आहे, सुठो घणो ठहंदो आहे।
2: छो त असां नंढा हूंदासीं, जॾहिं असांखे पंहिंजा माइट ठाहे ॾींदा हुआ त असां खणी वेंदासीं स्कूल कॉलेज में, जेके असांजा गैर सिंधी दोस्त यार हूंदा हुआ उहे खाईंदा हुआ त उन्हनि खे तमामु घणो वणंदो हो। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई, जंहिं नंढे खां इहो खाधो आहे त उहे इंतज़ारु कंदा आहिनि की भई तव्हांजो उहो मिठो जेको थधो त्योहारु थींदो आहे, मिठो लोलो ठहंदो आहे, उहो कॾहिं ईंदो, त उहे इंतज़ारु कंदा आहिनि। इन करे मुंहिंजे घर में त जाम तयारियूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि। ऐं सभ खां वधीक जेको अॼुकल्ह त मां ॾिसां थी तमामु घटि माण्हू ठाहिनि पिया, मुंहिंजे घर सतपुड़ा 8 ॾींहनि खां पहिरीं ही ठाहिणु चालू थी वेंदा आहिनि।
0: अरे वाह,
2: छो त सतपुड़ो ठाहिण में थोरो टाइम वधीक लॻंदो आहे ऐं वरी उनखे प्रेम प्यार श्रद्धा सां तमामु सुठे नमूने ठाहिणो हूंदो आहे,
0: तॾहिं उनजो मतिलबु धीरज जूं जेतिरियूं परतूं उन ते कबियूं आहिनि ओतिरो ई उहो वधीक फूलजंदो आहे ऐं सत पोड़ा ठहंदा
2: आहिनि। उहे सत जेकी परतूं आहिनि न, तूं सही ॻाल्हि कई राजकुमारी, उन सत परतुनि में सत तरह जी भावनाऊं, सत तरह जो प्यार, हर हिकु जो अलॻि अलॻि प्यार उन में शामिलु हूंदो आहे।

0: त सत ॾींहं पहिरीं न, बल्कि थोरो हाणे त वधीक पहिरीं खां सतपुड़ा मां ठाहिण शुरू करे छॾंदी आहियां। पहिरीं पहिरीं सतपुड़ा ठाहे रखंदी आहियां, उन खां पोइ गच, जंहिंखे कुझु माण्हू चोथा बि चवंदा आहिनि, ऐं उहे चोथा बि तरंदा आहियूं। उहे ॾिसो मुंहिंजे माइटनि में छड़ो अटे जा ऐं सूजीअ जा ठहंदा हुआ, पर हाणे जॾहिं मां शादी करे आयसि त हिते वरी बदिलाउ आहे। इहो ॾिठो कि हिते मुंहिंजी ससु मैदे जा ठाहींदी आहे, त उहा ई ॻाल्हि थी, मुंहिंजी ससु चई तूं पंहिंजा बि ठाहे, हितां जा बि ठाहे। त असांजे घर में हाणे उहे ॿई ठहंदा आहिनि, अधु मां अटे ऐं सूजीअ जा ठाहींदी आहियां ऐं अधु मैदे जा ठाहींदी आहियां। खटो भत ऐं पूड़ियूं, तरियल भींडियूं मसाले वारियूं, उहे जाम वणंदियूं आहिनि असांजे घर वारनि खे, ऐं पकोड़ा, दही वड़ा, ऐं उनजे अलावा चहरियूं कोकियूं, बसर वारियूं, उहे बि जाम वणंदियूं आहिनि सभिनीनि खे, हा बेसण वारियूं। ऐं उन में ख़ासि करे असांजे ॿारनि खे बि यादि रहंदो आहे कि हा
1: ॾाढनि खे थोरो सो सुकाए करे ऐं उन्हनि खे सुठी तरह सां कुटे करे सॼा धाणा थींदा आहिनि, उहे बि विझबा आहिनि।
0: ऐं हिकु मतिलबु सुठी भावना सां बि इहे शयूं कयूं बि पिया, खाऊं बि पिया, ऐं उनजो लुत्फ़ बि माणूं पिया।
1: त पूजा जी, तव्हां ॿुधायो कि तव्हांजे घर में ऐं माइटनि में थधे जी कीअं तयारी थींदी आहे? त थधे जी जीअं तयारी थी वई, जीअं त्योहार ॾींहुं असां सबरी करे सभिनी खां पहिरीं पूजा करणु वेंदा आहियूं, त ही पूजा कीअं थींदी आहे वॾी सतह जी, तव्हां ॿुधाईंदा?
0: हा हा बिल्कुलु, राति जो जेको बि पाण सभु थधो ठाहे रखंदा आहियूं ऐं उनखां पोइ चुल्ह खे थधो कबो आहे। हाणे अॼुकल्ह त चुल्ह न रहिया, गैस ते ई पाण पचाईंदा आहियूं, त जंहिं बि गैस ते पचाईंदा आहियूं उन गैस ते पाणीअ जा छंडा विझी उनखे थधो करे छॾंदा आहियूं, ऐं उन ते को अहिड़ो बासण या तओ उल्टो करे रखंदा आहियूं कि जीअं बि को ग़लतीअ सां बि उनखे ॿारे ॾे। पिठा लोला ठाहींदा आहियूं, गोईंदा आहियूं अटो, त जेकी उहा परात हूंदी आहे न, पोइ उन में उहो पाणी विझी थोरो सो ऐं उनखे घुमाए करे उन सां ई छंडा ॾेई ऐं थधो कंदा आहियूं, ऐं उहो थधो थी वियो। ऐं राति जो असां थोरा सा छोला या चणनि जी दाल पुसाए रखंदा आहियूं, ऐं सुबुह जो पोइ सनानु जेॾी महिल कंदा आहियूं त उहो थधो जेको इहो चणा ऐं पुसाया आहिनि उहो पाणी, चणा
1: चइबा आहिनि हिनखे,
0: हा बिल्कुलु, उहो खणी उहो पंहिंजे मथे ते विझी करे उन सां सनानु करे पंहिंजो पाण खे बि थधो कंदा आहियूं। छाकाणि मुंहिंजी ससु चवंदी हुई, असांजा वॾा बि चवंदा हुआ कि छो त असां पचायोसीं त असां त गर्म ई आहियूं, असां में उहा गर्माश आहे, त असां पंहिंजो पाण खे बि थधो कंदासीं, तॾहिं असां शीतला माता खे थधो करे सघंदासीं।
1: अच्छा पूजा, इन सां इहा प्रेरणा त मिले ई थी कि जेके बि पाण इहे रीति रिवाज पूरा कयूं था, पर करण वारा त असां ई आहियूं, त असां जेसि ताईं दिलि सां, मन सां, भावना सां
0: इन तरीक़े सां सनानु पाणी करे ऐं पोइ असां जेके बि असां पकवान ठाहिया आहिनि सभु उहे हिकु थाल में विझी करे थोरो थोरो पूजा लाइ ऐं न्याणी जो अलॻि कढी करे, हाणे ॾिसो पहिरीं त चवंदा हुआ कि दरिया ते वेंदा हुआ, तलाउ ते वेंदा हुआ, उहे ॻाल्हियूं त रहियूं न, ऐं मंदर में वञी करे सभु ॼणा गॾु थी करे उते ई पूजा कंदा आहिनि, ऐं कंहिंखे वक़्तु न हूंदो आहे त उहो पंहिंजे घर में जिथे बि जल जो स्रोत आहे, पाणी जो नल आहे, उते ई पूजा कंदो आहे, त उहे सभु पकवान खणे उन्हनि ते असां मखण, उहो मखण बि घर जो कढंदा आहियूं, ऐं उहो मखण ऐं सिंदूर जो तिल्क लॻाए करे सभिनीनि खे ईअं सजाए रखंदा आहियूं, जा ॾिसण में उहो थाल एॾो सुठो लॻंदो आहे ऐं हिकु आत्मिक ऊर्जा उन सां मिलंदी आहे। पूजा जे वक़्त असां छा कंदा आहियूं, जीअं थाल सॼी वियो सुठो सुहिणो बिल्कुलु लॻंदो आहे, ऐं ख़बर अथव इन में त ॿारनि खे एॾो मज़ो ईंदो आहे, चवंदा आहिनि ममी मूंखे ॾे मखण मां थी अणा ऐं सिंदूर मां थो अणा, त ॿार बि इन में बिल्कुलु शामिलु थींदा आहिनि। पोइ उहे जेको असां नंढो लोलो हिकु नंढो ठाहियोसीं उन ते जेकी सत अखणियूं रखियूंसीं उहे खणंदा आहियूं हथ में, ऐं थोरो सो जेको पाण चांवर चणनि जी दाल जेके राति जो पुसायासीं उहे बि हथ में खणी, पाणी में थोरो कचो खीर बि विझंदा आहियूं ऐं सिंदूर बि विझी करे उहे हथ में खणी ऐं हिकु हथ खां ॿिए हथ में रखंदा आहियूं ऐं गॾु गॾु एॾो सुठो हिकिड़ो पंहिंजो गीत आहे उहो बि ॻाईंदा आहियूं। उहो त शायदि तव्हां बि सभई ॻाईंदा हूंदो, अचो त पाण गॾिजी करे ॿुधायूं पंहिंजे ॿुधंदड़नि खे बि उहो कहिड़ो गीत ॻाईंदा आहियूं। सावण माई सत आई भरियूं झोलियूं ॾे, जहिड़ी सची शीतला तहिड़ो मूं करे, सतीअ संदा सत पुट सत मूं सुहाइनि था,
1: नीलीअ घोड़ीअ जो चढ़े सो सतीअ जो कांद, पुट खटी घर आया वरियो मुंहिंजो भाग, वर खटी घर आया वरियो मुंहिंजो भाग, केरूअ रता कपिड़ा आलाड़ी ॿोड़ी नितियूं, खीर पुट लक्ष्मी रोज़ी ॾींदो राम, सची शीतला माता तूं घटरी मां जड़ ठरी तू हेठ ठरी मां पेट ठरी
2: ऐं पूजा हे मां भई इहो जेको भॼन चइजे इहो पूजा जो जेको भॼन आहे कि हीअ शीतला माता जी जेका असां वॾी सत मल्हाईंदा आहियूं इन में मक़सदु इहो ई हूंदो आहे कि असांजे घर जा ॿार पुट धीअरूं ऐं जेके असांजा घोट सावरा सभु ख़ुशहाल रहनि
0: ऐं बिल्कुलु इहो इन करे बि हूंदो हो त पहिरीं जेके बि अंधविश्वास हूंदा न माण्हू सम्झंदा हुआ कि भई इनखे कोई देवीअ प्रकोप थी वियो आहे इनखे कुझु निकितो आहे माता जी निकिता है त उनखे थधो करण लाइ इहो शीतला माता जो ख़ासि मक़सदु इहो ई हूंदो आहे की शीतला माता खे पाण थधो कंदा आहियूं ऐं इन करे हिकु ॾींहुं पहिरीं थधो ठाहे ॿिए ॾींहुं उनखे थधे जी पूजा करे थधो खाईंदा आहियूं
2: ऐं इन बहाने असां ख़ुदि जा मन थधा कंदा आहियूं। अच्छा पूजा, तव्हां इहा ॻाल्हि ॿुधाई कि हिन तरीक़े सां असां पूजा कंदा आहियूं ताम ठाहींदा आहियूं त पहिरीं खां जेको हलियो पियो अचे रिवाज़ नियम उहे सभु हाणे पूरा थियनि पिया या वक़्त जे बदिलावनि सां गॾु गॾु असां उन में कुझु बदिलाउ कयो आहे? छो जो पहिरीं जेके संयुक्त परिवार हूंदा हुआ, जॉइंट फैमिलीज़ हूंदियूं हुयूं, ॿार सभु घर ई हूंदा हुआ, सभु कुझु मतिलबु अंदरि ई हूंदो हो, केरु ॿाहिरि कमाइण कान वियो आहे, धीअरूं पुट नूअरूं सभु आसे पासे में आहिनि। त हाणे वक़्तु ॾाढो बदिलजी वियो आहे, हाणे तूं छा महसूसु करे रही आहीं? ऐं न केवल बदिलाउ इहे आया आहिनि बल्कि शारीरिक रूप सां बि असां तंदुरुस्तीअ तरफ़
1: जीवन
0: तमामु घणा बदिलाव आया आहिनि। असां ॾिसूं त ॾिसो परिवर्तन त चवंदा आहिनि न दुनिया जो नियम आहे, बदिलाव असांखे हर हंधि ॾिसण में ईंदो। ईअं न त रुगो त्योहार असांखे ॾिसण में पिया अचनि की बदिलजी विया आहिनि, असांजी जीवनचर्या में बदिलाव आयो आहे, असांजे नौकरी करण जे तरीक़नि में बदिलाव आयो आहे, पंहिंजो पाण खे तंदुरुस्त रखण में बदिलाव आयो आहे, त हर शइ में बदिलाव आयो आहे। पर हा, कुझु बदिलाव जेके पाण इन्हनि त्योहारनि में ॾिसूं था, ख़ासि करे जेकी असांजी जेकी नई टई आहे उहा असां खां अॼु परे थी रहे, छो त उन्हनि खे पंहिंजे कम धंधे जे करे ॿाहिरि रहणो थो पए, उहे असांजे त्योहारनि में जुड़ी नथा सघनि। त उन्हनि में बदिलाउ आयो आहे, जेकी शयूं असां ठाहींदा हुआसीं सभु गॾिजी करे, उन्हनि खे टाइम कान्हे, उहे परे आहिनि, घणा त एतिरो परे आहिनि की उते इहे शयूं मिलंदियूं बि न आहिनि त हू ठाहे बि न सघंदा आहिनि। त बदिलाउ त जाम आया आहिनि, पर मां सम्झां थी की वरी बि जेके अॼु जा असांजा ॿार आहिनि उहे इन्हनि त्योहारनि खे यादि करे या अगरि उन्हनि वटि मोकल हूंदी आहे त उहे इन में शामिल ज़रूर थींदा
1: आहिनि।
0: इहा बि ॻाल्हि कान्हे की उहे ॿई टाइम भई थधो खाइनि। ऐं ॾिसो बदिलाउ हिकु ॿियो बि आयो आहे, त भले अॼु असां वटि वक़्तु कान्हे, असां सभु शयूं त ठाहे नथा सघूं, ऐं अॼु त आधुनिकता जे दौर में असां ॾिसूं त सभु कुझु बाज़ारुनि में मिले पियो थो ठहियल,
2: कई रेडीमेड शयूं बि भई मिलंदियूं आहिनि।
0: हा, जीअं नानकतायूं थियूं, अॼुकल्ह चौथा बि मिलनि था ऐं सतपुड़ा, हा उहे बि मिलनि था, त उहे ॿाहिरां घुराए करे बि असां ठीकु आहे, असांखे टाइम कान्हे त नथा ठाहे सघूं, पर उन्हनि शयुनि जो सुगुन त पाण उन रूप में कयूं ई था न।
2: तव्हां घर में एतिरो वधीक फैलाव न कयो, ॿाहिरां मिलनि थियूं पर त्योहारनि खे मल्हायूं ज़रूरु।
0: ऐं असांजे समाज में त हाणे घणी एतिरियूं संस्थाऊं पंचायतूं थी वियूं आहिनि की इहे जेके त्योहार आहिनि, ख़ासि करे थधिड़ी जो त्योहार त सॼे शहर वारा गॾिजी करे हिकु हंधि हिकु ॾींहुं रखी छॾंदा आहिनि ऐं उन में सांस्कृतिक प्रोग्राम बि कंदा आहिनि ऐं नंढनि ॿारनि खे बि जोड़ींदा आहिनि। उते बाक़ाइदा पूरी पूजा विधि सां थधिड़ी जो सॼो प्रोग्राम थींदो आहे ऐं जेके बि पकवान आहिनि उहे लंच में उन्हनि खे उहे खाराइबा आहिनि,
2: मतिलबु सामूहिक रूप सां मल्हाईंदा।
0: हा, बिल्कुलु।
1: हलंदे हलंदे पूजा जी, तव्हां असांजी भेनरुनि खे छा संदेश ॾियणु चाहींदा?
0: भई मां त इहो ई चवंदसि की ॾिसो आधुनिकता सां गॾु जेके त्योहारनि में बदिलाउ आयो आहे इहो त असांखे नज़र अचे ई पियो, पर तॾहिं बि मां इहो सम्झां थी की जेके बि असांजा रीति रिवाज आहिनि उन्हनि में अॼु बि असांजी जेकी भावनाऊं आहिनि, श्रद्धा आहे, असांजी जेकी श्रद्धा आहे उहा बरक़रार आहे ऐं असांजा ॿार बि उहे न मिलनि पर ॾिण वार पूजा पाठ जॾहिं बि थींदा आहिनि सभु गॾिजी वेहंदा आहिनि ऐं उन्हनि त्योहारनि में शामिल थींदा आहिनि। हा, भले उन्हनि खे उहो ॻाइण कहाणी ॿुधण न अचे, ऐं इहा हिकु ॿी ॻाल्हि आहे की असांजा जेके बि तीज त्योहार थींदा आहिनि, ॾिण वार थींदा आहिनि, उहे कंहिं न कंहिं लोक कथाउनि सां बि जुड़ियल आहिनि, त जॾहिं उहे कथा असां ॿुधाईंदा आहियूं त ॿारनि खे बि ॿुधण में मज़ो ईंदो आहे। ऐं वरी सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे हाणे, त सोशल मीडिया ते बि एतिरो प्रचार प्रसार थी वेंदो आहे पंहिंजे ॾिण वारनि जो, त ॿार जॾहिं उन में ॾिसंदा आहिनि न त उन्हनि खे बि लॻंदो आहे की हा, इहो त असां बि ठाहे था सघूं, असां छो न ठाहियूं। त मां त इहो ई चवंदसि की भई असां पंहिंजे ॿारनि खे इहे संस्कार ज़रूरु ॾियूं त उहे जेको

0: बि थोरो घणो सिखनि, जेको बि थोरो घणो ठाहे सघनि उहे ज़रूरु ठाहिनि, छो त अॼु असां पंहिंजे पेकनि में जेकी शइ ठाहींदासीं उहे पंहिंजे साउरनि में हली करे उन्हनि खे अॻियां वधाईंदासीं। भले तव्हां हिकिड़ो ई लोलो ठाहियो न, वधीक छो, पर
1: सही
0: हा
1: ॻाल्हि आहे,
0: पतो हुजे की इहो ईअं ठाहिबो
1: ॿार
0: आहे।
1: संस्कृति सां जुड़ा रहनि। बिल्कुलु बिल्कुलु पूजा, तो पंहिंजो हेतिरो क़ीमती वक़्तु कढी करे असां सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं स्टूडियो में आई आहीं, ॾाढो ॾाढो धन्यवाद, शुक्रिया।
0: भई धन्यवाद तो तव्हां ॿिन्हिनि जो बि।
1: त हेमा ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿोल रही, कई शयूं त मूंखे ख़ुदि नई ॼाण मिली की हिन खे ईअं छो कबो आहे ऐं कीअं कबो आहे, वापसि सां रिकॉल कयो मूं। हेमा हिन ॻाल्हि ॿोल खां पोइ मूंखे कुझु फिल्मूं यादि अची रहियूं आहिनि, को चहिरो यादि अची रहियो आहे, जेको चिमकंदड़ चहिरो ऐं खिलंदड़ चहिरो। हा मां सम्झी वई दीदी तव्हांजो इशारो। सुभाणे जनमदिन आहे अजीत वाछानी जो। दीदी तव्हां अजीत वाछानी जो जनमॾींहुं जे बारे में ॻाल्हायो त हू न त को वॾो हीरो हो ऐं न ही कोई नामी गिरामी डायरेक्टर हो, पर हिंदी फिल्म तोड़े टेलीविजन जे पर्दे ते हुन पंहिंजनि निभायल नंढनि रोलनि में बि पंहिंजी अदाकारीअ जे फ़न जो अहिड़ो असराइतो मुज़हिरो कयो जो बॉलीवुड सिंधी अखर बि आब वधीक रोशन थी वई। मिस्टर इंडिया अजीत वाछानी जी हिकु कामयाबु फिल्म हुई, त मैंने प्यार किया ऐं हम साथ साथ हैं संदसि यादगार हिंदी फिल्मूं आहिनि। हुननि 50 खां वधीक फिल्मुनि में जुदा जुदा किरदार निभाया। सन 2000 में रिलीज़ थियल सिंधी फिल्म दिल लिजे दिलवारनि खे ऐं 2001 में सिंधी फिल्म पाड़ेवारी में बि हुननि कमु कयो। अजीत वाछानी घणेई टीवी सीरियल्स में बि कमु कयो, जंहिंमें ख़ासि हुआ बनते बिगड़ते, हसरतें, दाने अनार के, एक महल हो सपनो का। ऐं दीदी तव्हांखे पतो आहे एक महल हो सपनो का हिन 1000 एपिसोड पूरा कया।
0: अरे वाह,
1: हुननि जी अदाकारी हेॾी असराइती हुई जो अॼु बि माण्हुनि जे ज़हन में हू यादि आहिनि।
0: भले उहे न हुजनि पर पंहिंजी एक्टिंग जे ज़रिए हुननि जेका माण्हुनि जे दिलनि में छाप विधी आहे उहा छाप त हमेशह रहंदी रहंदी।
1: बिल्कुलु दीदी। साथियो, आलमी आदिवासी ॾिहाड़ो हर साल 9 अगस्त जो मल्हायो वेंदो आहे। ही ॾिहाड़ो दुनिया भर जे आदिवासी समुदाय जे अधिकारनि जी रखिया ऐं हुननि जी संस्कृति खे सम्मान ॾियण लाइ मल्हायो वेंदो आहे। साल 1982 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र जी आदिवासी आबादी ते कार्य समूह जी पहिरीं बैठक थी हुई, जंहिंजी यादि में ही ॾींहुं चूंडियो वियो। साथियो, सावण अचण वारो आहे ऐं बारिश जो मौसम पियो हले। सावण जी मुंद जो अलॻि ही नज़ारो थींदो आहे। हर हंधु सावक ॾिसी दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे। सावण हुजे ऐं साॼण गॾु न हुजे त हीउ गीत त यादि ईंदो आहे। त अचो ॿुधूं था भगवंती नावाणी जी सुरीली आवाज़ में ही सावण जो गीत।

गीत ॿुधी त मज़ो ई अची वियो। ऐं हाणे हिकिड़ो ॿियो सुहिणो गीत ॿुधूं। आवाज़ आहे कमला केसवानी जी।

वाह, गीत ॿुधी त मज़ो ई अची वियो। अॼु जे प्रोग्राम में असां सॼे सावण खे मल्हायोसीं, सावण जा त्योहार मल्हायासीं, गीत ॿुधियासीं, तमामु मज़ो आयो। ऐं हाणे घड़ी इशारो करे पई प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियण जो। वरी गॾिजाणी थींदी सिंधी प्रोग्राम में। तेसीं ताईं हेमा मलानी खे ॾींदा मोकल, नमस्कार।

आपने सुना सिंधी कार्यक्रम, इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आंधी फिल्म के गाने से कर रहे हैं। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गुलजार ने गाने को लिखा, गाने के लिए राहुल देव बर्मन का संगीत है।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे हैं। अजनबी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी की इस गीत रचना को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना बगावत। फिल्म के इस गाने में आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए बगावत फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र से अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन का 1 बजने वाला है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये इस वर्ष अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: इसके बाद दोनों मंत्रियों ने अल्बर्ट हॉल से राज्यस्तरीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि ये अभियान आज जनव्यापी अभियान का रूप ले चुका है।
1: 2022 में जब भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये तिरंगा सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर फहराने वाला ही ध्वज नहीं है, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी उपक्रमों में ही फहराया जाए यह ठीक नहीं है, यह घर घर में फहराया जाना चाहिए और हर लोगों के दिलों में बसना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आमजन से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
2: आप सबने देखा है, तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारे। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जनभागीदारी का परिचय दें, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है।
0: ये रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर रामनिवास बाग, निकास गेट से सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, आर्मी के जवान, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित करीब 10,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। जालौर में तिरंगा रैली के साथ जन जागृति अभियान शुरू हो गया है। झुंझुनू, पाली और अलवर में प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान भी किया गया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तिरंगा यात्रा के साथ ही देश की रक्षा और आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम आदिवासी पारंपरिक दायियों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा रखी गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बरसात का ये दौर 13 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का दौर बना हुआ है। सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर पानी खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास में बरसा। अलवर, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, सवाईमाधोपुर और सीकर जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के 4 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण मिला है। जिले के अनूप शहर, कलाना, भूमपुरा और मक्कासर के PHC प्रमाणित होने के बाद क्वालिटी सर्टिफाइड चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने बंदिश फिल्म से लिया है। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। आनंद बख्शी के रचे इस गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए चरस फिल्म का गीत। गीत को लता मंगेशकर ने गाया है, गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं। इस गाने के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

चरस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। लता मंगेशकर के ही स्वर में एक और गीत आपको रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से सुनवा रही हैं। गीत रचना वर्मा मलिक की है। इस गाने के लिए धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। प्यार का मौसम फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है। गाने के लिए तर्ज आर डी बर्मन ने बनाई है।